0: शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहो है। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
0: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहो है।
1: उनका अलावा असा वट रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे।
0: अवां जे एतमाद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
1: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी बिन तकरीबन लाए हाँ असा सा राबतो करो। असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी की सर्विस पिण मौजूद आहे। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 0371800-3920।
0: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे में
0: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने ब्या मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
1: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे का रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
0: ऐं गायनेकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 बजे खां शाम 4 बजे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 बजे खां 1 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा
0: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 बजे खां 3 बजे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: सामीन व नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि थे में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कराची में पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
5: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786।
2: जी हा 2331-2525-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी खुद को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ और शिफाफ पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत। 8 मिलीलीटर 5 बोतल
4: ये बोतल
3: अलावा असां वटि सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात जी सर्विस मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 7
5: प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3241-200
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर माकली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900392।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राबितो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबितो कंदा।
8: 03125257 86।
6: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

जंहिंजे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में मकानी इदारनि जे ख़ाली सीटुनि जी नंढी चूंड जारी। पोलिंग जो अमल बिना कंहिं वक़्ते जे शाम 5 वॻे ते जारी रहंदो। खैरपुर नाथन शाह जी यूसी बुरड़ा वारे ज़िले काउंसिल जी ख़ाली सीट ते बीपी उमेदवार अमजद बुरड़ो ऐं जीडीए जे ज़ुल्फ़िकार ख़ान रो बिन मुक़ाबले जो इम्कान। मीरपुर बुरड़ो जी यूसी रांझापुर वारे ज़िले काउंसिल सीट ते 7 उमेदवार लथल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
7: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03132525786
2: जी हा 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो जी कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और इतवार को सुबह का सलाम मेरा आप सब तक पहुंच जाए। तो जी कैसे हैं आप सब। तो जी मुझे कहते हैं आरजे सना, और जैसे कि आप सुन रहे हैं जी FM 88 आओ बात करें में आप मौजूद हैं सना आरजे के साथ। उनके आज के नए सवाल सुनने के लिए तैयार हो जाएं। क्या आप लोग तैयार हैं मेरे आज का सवाल सुनने के लिए? अगर तैयार हैं तो मुझे SMS करें, और SMS करने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, अपना मोबाइल उठाना, टाइप करना है 888-1PSKR, और अपने प्यार से नाम के साथ मुझे SMS करके बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन मेरे साथ मौजूद है, कौन कौन उठ गया है अपनी नींद से, और आज की न्यू एक्टिविटीज को शेयर मुझसे जरूर करिएगा, जो आपकी न्यू एक्टिविटीज आज के दिन होने वाली हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जी आज एक और नया सवाल के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं, तो उठ जाइए मेरे साथ और दिमाग को उठाइए अपने साथ। आपने क्या करना है, मेरे सवाल को सुनना है गौर से और उसका जवाब देना है जस्ट, और थोड़े से दिमाग को चलाने की जरूरत होती है, बाकी नकल अकल करने की कोई जरूरत नहीं होती मेरे क्वेश्चंस में। अच्छा जी, तो अभी से मेरे साथ हो जाएं, क्योंकि लास्ट के टाइम अगर आप लोग मेरे साथ आ रहे हैं तो क्या होता है कि मैं और आप ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, और टाइम हमारा एंड की तरफ चला जाता है तो वो हमारी बातें रह जाती हैं। अच्छा जी, तो जो मैं सवाल करने लगूंगी, सवाल के जवाब देने के साथ आपने एक सॉन्ग का नाम, कोई भी सॉन्ग का नाम आपने साथ में जरूर टाइप करके मुझे भेजना है। अगर आपका राइट आंसर होगा तो सॉन्ग वो प्ले हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई वो आपका राइट आंसर था जिसकी वजह से वो आपका सॉन्ग प्ले हुआ। हाँ, अगर वो सॉन्ग प्ले नहीं होता तो समझिएगा कि आपका जवाब गलत था, लेकिन अगर सॉन्ग अच्छा लगा तो मैं फिर भी चलाऊंगी। आज फिर भी मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर आप लोगों को सॉन्ग मुझे अच्छे लगे तो मैं सॉन्ग को जरूर प्ले करूंगी, अगर आपका आंसर ठीक हो या ना भी हो। ओके जी, तो आपने क्या करना है, चलें अब देखते हैं आप लोग मेरे सवाल का जवाब कौन दे पाता है कौन नहीं दे पाता। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जी आप सुन रहे हैं आओ बात कर रहे हैं, मैं शामिल हैं आप लोग मेरे साथ, मतलब कि आज सना के साथ प्यारी सी आवाज सुन रहे हैं। तो मेरी आवाज को सुनने के साथ देर किए बगैर मेरे पेज को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है, और SMS करके मुझे बताना है कि मेरे साथ कौन मौजूद है। SMS करने के लिए आपने टाइप करना है 888-1SKR, आप मुझे भेज सकते हैं, और फेसबुक से जो लाइव
1: भरोसे का।
0: ओके जी, तो आपने क्या करना है, चलें अब देखते हैं आप लोग मेरे सवाल का जवाब कौन दे पाता है कौन नहीं दे पाता। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जी आप सुन रहे हैं आओ बात कर रहे हैं, मैं शामिल हैं आप लोग मेरे साथ, मतलब कि आज सना के साथ प्यारी सी आवाज सुन रहे हैं। तो मेरी आवाज को सुनने के साथ देर किए बगैर मेरे पेज को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है, और SMS करके मुझे बताना है कि मेरे साथ कौन मौजूद है। SMS करने के लिए आपने टाइप करना है 888-1SKR, आप मुझे भेज सकते हैं, और फेसबुक से जो लाइव है आप लोग मेरे सवाल का जवाब कौन दे पाता है। वाह जी वाह वाह, सबसे पहले हमेशा की तरह आज भी मसरूर अहमद हमें कराची से ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज उनके साथ सबसे पहले एक और बंदा हमें ज्वाइन करता है, तो उन्होंने अपना नाम लिखा है ओके वसीम। वसीम ने भी हमें आज सबसे पहले ज्वाइन किया है हमेशा की तरह, लेकिन आज वो सबसे पहले उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, देन उसके बाद हमें जो ज्वाइन किया है वो है मसरूर अहमद। तो जी देखते हैं।

तो जी मैं आपको बता रही थी और के जो है सबसे पहले हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं वसीम और मसरूर अहमद. तो जी देखते हैं वसीम हमें कहते हैं कि सलाम स्वीट सना, कैसी हो आप? शो नाइस, आप भी नाइस होंगी, वॉइस नाइस है, प्लीज प्ले तो प्ले टू अकबर आंख बदली. अच्छा आई एम वसीम और मुस्कुराती रहो हमेशा. थैंक यू सो मच वसीम और फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट और ये दुआ और ये कमेंट के लिए, एसएमएस के लिए. और अच्छा लगा कि आपने आज मुझे सबसे पहले ज्वाइन किया है. आपने सॉन्ग का नाम बताया है, जरूर हम लोग प्ले करेंगे, लेकिन आपने आज मेरा सवाल सुना है अभी, तो सवाल सुनने के साथ आप मेरा जवाब भी तो दें. सवाल मेरा ये था कि आपने बताना वो ऐसा क्या है जिसके पास उसके पास आंखे तो हैं मगर वो फिर भी देख नहीं सकती. तो जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए कि ऐसी कौन है वो. और उसके अलावा इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं कराची से मसरूर अहमद, हमारे साथ मौजूद है कराची से मसरूर अहमद. कहते हैं आरजी सना जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह वीआई पे खूबसूरत शो एंड खूबसूरत आरजी सना जी. आओ बात करें प्रोग्राम का, हर वीक के इंतजार रहता है और आपकी खूबसूरत आवाज सुनने का. थैंक यू सो मच मसरूर अहमद. और मुझे भी मतलब एक इंतजार होता है कि यार मैं जाऊंगी सबसे पहले मसरूर अहमद का मैसेज आएगा, किसी का आए या नहीं आए मसरूर अहमद का लाजमी मैसेज आना है. तो वही होता है कि नहीं आप मुझे इस मैसेज को बनाते हैं और अच्छा लगता है कि आप मुझे ज्वाइन करते हैं सबसे पहले और मेरे कॉमेंट्स मुझे कॉमेंट करते हैं और अगर सवाल सुन लेते हैं तो सवाल सुनने के साथ उसका जवाब भी देते हैं. जी आपने क्या करना है? अभी भी यही करना है, मेरा सवाल सुन लिया है तो उसका जवाब भी जरूर दें मुझे और मुझे बताएं कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुना पसंद करेंगे. लेकिन मेरे सवाल सुनने के जवाब के बाद, मतलब आप जब मेरे सवाल का जवाब दे रहे होंगे तो जवाब के साथ आप मुझे सॉन्ग का नाम भी लिख दें ताकि मैं जब वो सॉन्ग प्ले करूं तब समझ आएगा कि यार आपका जवाब बिल्कुल ठीक था. ओके जी, तो देख लेते हैं कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुना पसंद करेंगे. लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी एक और सॉन्ग प्ले करने लगी हूँ, वो भी अपनी पसंद का.

0: வெல்கம்.
1: तो जी हाँ, वो सॉन्ग सुन कर दिया है मैंने प्ले और सुनते हैं इस मजेदार सॉन्ग को.
0: वेलकम.

तो जी जैसा कि सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग सॉन्ग, और सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत अच्छा लगा होगा ये आप को भी। तो जी देख लेते हैं यहाँ पर हमें फेसबुक से कौन ज्वाइन करता है। हमें फेसबुक पे ज्वाइन करते हैं कहते हैं अब्दुल रजाक, कहते हैं मोहम्मद खान कंबार, वफा जमाल कंबार, एजाज कंबार, आर्यू पोटर स्टॉप, नज्द जलोरी, मीरपुर खास से शो सुनते ही प्रोग्राम जबरदस्त होता है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच अब्दुल रजाक, और यकीनन आप मुझे ज्वाइन करते हैं जो सुनते हैं, तो एंड तक आप मेरे साथ रहते हैं, तो मेरा सवाल भी सुना होगा, मेरे सवाल का जवाब भी देते हैं प्लीज, और साथ में एक सॉन्ग का नाम भी लिख के दीजिए ताकि मैं अगर वो प्ले कर दूं तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक था अब्दुल रजाक। तो ऐसे आप मुझे ज्वाइन करते रहना, हर संडे में होती हूँ आपके साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ आओ बात करें में। और बात करने का मतलब होता है कि बहुत सारी बातें करनी होती है, लेकिन आप लोग तो अकेले अकेले सारी बातें कर लेते हैं, हाँ मुझे बताते भी नहीं सुबह ही एक्टिविटीज। तो जी आपने क्या करना है, मुझे ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करने के बाद अगर मेरे सवाल का जवाब मुझे देना है तो वैसे ही देना है जैसे मैं आपको बताया है, सॉन्ग का नाम लिख के जरूर बताना है। और अब्दुल रजाक ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, तो ऐसे ही आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, थोड़ी सी खुशी में और भी इजाफा हो सकता है, मतलब कि आप कर सकते हैं, तो मेरी खुशी में इजाफा करना चाहते हैं तो मुझे जरूर मेरे सवाल का जवाब दें और सॉन्ग का नाम लिख दें। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा देख लेते हैं हमें यहाँ पर एक और जो है हमारा लिस्टर हमारे साथ मौजूद है, अभी देख लेते हैं हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत हुसैन कहते हैं, जो हमें SMS करते हैं। सदाकत हुसैन कहते हैं मिरानी, सदाकत हुसैन मिरानी बचल शाह मानी सक्कर बाजी, गुजरा हुआ संडे, अच्छा मदर डे था, कैसी आरजे हैं और जो आपको माँ का आर्मी दिन याद नहीं, मुझे दुख है, मदर समझी नहीं मैं ऐसे कैसे के मदर डे। जी जी बिल्कुल मदर डे था, लेकिन जो है मुझे याद नहीं वाकई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस दौरान मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने खुद आप लोगों से कहा था कि अगर यार मुझे दुख है या मैं अपसेट हूँ तो मैं क्या करूँ, तो जिस पे आप लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे उस दिन भी, तो ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद होती है हर चीज़। अगर आपको याद थी तो मैं आप लोगों को चेक करना चाह रही थी भाई कि अगर आप लोगों को मुझसे ज़्यादा याद है तो आप लोग मुझे बता देते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं बताऊँ आप बताएं, हम लोग बात कर रहे हैं, आओ बात करें का मतलब क्या होता है यार, आप और भी मिल के बात कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जी ये बहस करेंगे हम थोड़ी देर बाद, अभी चलते हैं हम एक छोटे से शॉर्ट कम शब्बे की तरफ, वापस आते हैं, वापस साथ रहेगा हमारे सदाकत हुसैन, तो आपसे मैंने बात करनी है। ओके जी, तो यहाँ पर चलते हैं एक हम छोटे से शॉर्ट कम शब्बे की तरफ, रहेगा मेरे साथ।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मात

0: मछली और माछली की आवाज GFM 90.4
1: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578
2: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़
3: माँ के साथ जुड़ी होती है ऐसे थोड़ी है कि एक दिन क्या कर लेंगे आप हमेशा हर दिन उन्हीं का होता है हम उन्हीं की वजह से जिंदा होते हैं उन्हीं की मोहब्बत हमें जिंदा रखती है तो ये चीज़ आप कभी नहीं भूला करें और यकीन करें मैं ये चीज़ें कभी इन चीज़ों पे वो नहीं करती कि आज वो है तो आज ये फॉर्मेलिटीज होती हैं अगर आप विश कर देंगे ये कुछ कर देंगे आप डेली बेसिस पे अगर माँ का आलमी दिन समझ के उनके साथ खिदमत करें उनका ख्याल रखें ना यकीन करें वो जो दुआ एक दिन में आप लेना चाहते हैं वो आपको रोज मिला करें लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है आप लोग सब समझ रहे होते हैं कि यार एक ही दिन माँ का है तो या एक ही दिन बर्थडे की होती है ये चीजें गलत हैं आप रोज ऐसे बन के समझ के जिए कि आज का ही दिन है या आज का ही वो आखिरी दिन है जो सिर्फ आज ही है तो रोज अगर आप इस तरीके से जिएंगे आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजरेगी और किसी को तंग करने के बजाय आप अपनी जिंदगी को खुद संवार सकते हैं रोज दुआएं ले सकते हैं सिवाय एक दिन लेने के तो ये चीजें नहीं होती मुझे याद सब कुछ था लेकिन ये चीजें मैं मेरे पास इस तरीके से कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि यार एक ही दिन माँ का है या एक ही दिन इसका है ऐसा नहीं है हर दिन माँ का है हर चीज माँ से है माँ के बिना कुछ भी नहीं होता तो ये चीज आप हमेशा जहन में रखा करें और उसके अलावा देखते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है हमारे साथ मौजूद है खालिक लशारी जलोरी से बाजी जवाब है अच्छा ओके जवाब दिया आपने सही हो तो गाना हम तो तेरी राह देखेंगे सर हम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम वाह क्या सॉन्ग आपने बताया ये सॉन्ग मैं जरूर प्ले करूंगी और आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है इसलिए ही मैं आपका ये वाला सॉन्ग प्ले करूंगी ओके जी मैंने इसलिए बताया कि लोग ये ना सुने सॉन्ग पसंद आया तो प्ले कर दिया नहीं आपका जवाब बिल्कुल ठीक है तो मैं सॉन्ग आपका जरूर प्ले करूंगी तो लास्ट में अपना जवाब जरूर बता दूंगी लेकिन अभी मैं सॉन्ग प्ले करूंगी आपके पसंद वाला क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है इसके अलावा देखते हैं हमारे मौजूद है लाड़काना से कहते हैं अरीबा बाजी जवाब नहीं आ रहे हैं प्लीज प्ले असा कंबर वारा वॉइस बाय फायजा अली के ओके जी जरूर हम प्ले करेंगे और सवाल मेरा आपने मुझे जवाब नहीं दिया सवाल मेरा ये था कि आपने मुझे बताना था कि यार उसके पास आंखें तो हैं पर वो कुछ देख नहीं सकती तो ऐसा क्या है जो जिसके पास आंखें हैं वो हमें देख नहीं सकती वो को मतलब

तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक सॉन्ग प्ले करने लगे हैं कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम भाई अली जफर। तो चलें देख लेते हैं और सुनते हैं ये सॉन्ग। सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और साथ में मिलकर सुनते हैं। उसके बाद जाएंगे हम छोटा सा एक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, लेकिन जल्दी से वापस आ जाएंगे उसके बाद। लेकिन अभी सुनते हैं सॉन्ग मजेदार।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125257 86।
1: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
3: 90.4 पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03132525786
1: जी हा 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

तो जी, और इतना भी आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा सॉन्ग बताना है कौन सा सॉन्ग नहीं बताना, तो सोचते सोचते और बताएं। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि यहाँ पर अभी हम रहीम शाह की आवाज़ में एक और सॉन्ग सुन ले रहे हैं, मतलब अभी तक इनके आवाज़ में तो आज हमने नहीं सुना, तो मेरे पास एक सॉन्ग था। जब तक आप लोग अपने सॉन्ग की फरमाइश आप लोग मुझे ढूंढ के बताएं, जब तक यहाँ पर करती हूँ मैं सॉन्ग प्ले, तो सबके लिए होगा ये सॉन्ग और सुनेंगे सारे ही मिलके। तो कर दिया मैं प्ले, इसको सुनते हैं। उसके बाद एक और सवाल मेरे पास है जो मैं आपसे पूछूंगी, वो भी सॉन्ग के बाद। ओके,

0: मां आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
1: जी हा 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जनाब, सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सगरन मेहरापुर मादिली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सदराब के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए, खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते जाइए। ओके जी, तो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बता रहे हैं कि क्या आप कभी बिना वजह रेडी हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह हमेशा रेडी शेडी रहते हैं, तैयार शैयार रहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप भी बिना वजह रेडी होते हैं या फिर आप उन लोगों में शामिल नहीं होते हैं। ओके जी, तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बन जाइए और बताइए इस तरह की आप भी हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को जो इतना पहले बता दिया कि भाई किस तरह ये प्रोडक्ट्स है और आपने किस तरह जो है ना इनको परचेज करना है, लेकिन अब बात जरा यहाँ तक पहुँच गई है कि आप लोगों को बताया जाए कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं ये आप लोगों के एरिया में भी मिल रहे हैं, आप लोगों को पता भी है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, लेकिन बात यहाँ पर आकर जो है ना वो थोड़ी सी खुल जाती है कि आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह होती है कि भाई आप लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट के ये वाले फायदे हमें मिलने वाले, इन चीजों से ये प्रोडक्ट तैयार शुदा है और ये वाले फायदे हमें मिलेंगे जब हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये नाइट क्रीम है, यानी कि रात के टाइम लगाने वाली क्रीम है और उसके अलावा ये एवोकाडो और एलोवेरा से तैयार शुदा है। तो एवोकाडो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, एलोवेरा तो भाई आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। एलोवेरा से आपके चेहरे पर जो ड्राइनेस होती है वो खत्म हो जाती है, आपके चेहरे पर एक्नी का मसला है वो खत्म हो जाता है, आपके चेहरे की स्किन स्मूथ हो जाती है, क्लियर हो जाती है और आप हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाते हैं। तो जब आप इस्तेमाल करते हैं जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। ये आपकी जल्द को नरमी मुलायम करती है और आपकी जल्द को हमेशा तरोताजा बनाए रखती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें ऐड की गई है वो सारी आप लोगों की स्किन के लिए फायदेमंद है और साथ साथ जबकि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होने लग जाती है। जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो स्किन है ना वो किसी भी टोन की हो तो आपको बेफिक्र होकर लगानी चाहिए, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। और जनाब सबसे बड़ी बात कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो वो ये जरूर आप देखा करें कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है या नहीं। तो जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट है, हर कोई लगा सकता है, लड़के लड़कियां सभी लगाएंगे और साथ साथ खूबसूरत हो जाएंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एज ब्यूटी सोप भी मिल रहा है। व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी व्हाइट एज का ब्यूटी सोप आप परचेज करेंगे और साथ साथ अगर आप साबुन नहीं लगाते हैं, आप फेस वॉश लगाते हैं, तो आपके लिए व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश मौजूद है जो कि आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही साथ अगर आप एक्नी की वजह से शदीद वाला परेशान है तो भाई परेशान मत हो, ये वैसे भी जब गर्मियों का सीजन आता है ना तो बहुत से लोगों के चेहरे पर ये एक्नी का मसला ना ये आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे आप टीनेजर्स हो या फिर बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे उनकी एज चाहे कितनी भी हो ना लेकिन उनके चेहरे पर अगर एक मरतबा एक्नी आ चुका ना तो उसने ये बोलना है कि भाई मां हानिकारिक होने में तो मामा इतने उन एक्नी के चो बाबा हलो आने तांजी मोकल थी भैया। तो एक्नी के खत्म कयो, एक्नी जलाए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी जो आने ही ट्यूब अवेलेबल आ तवां जलाए तवां ही एंटी एक्नी ट्यूब लगाए सगो था जेको डॉक्टर पिंपल जी नाले सा है। डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब आहे जेको आयुर्वेदिक फार्मुलेशन तैयार थियल आहे, तवां दुकानदार के चंदा ना बाबा असां के डॉक्टर पिंपल ट्यूब जो जेको व्हाइट एज वारन जो आहे तो तवां के इजी ले दे शरीर को आसान आहे। त जेको ही डॉक्टर पिंपल वारो एक्नी वारो ट्यूब आ ना इनके तवां राजे टाइम लगाए था, राजे टाइम तवां बिल्कुल लगायो नीह में, अगर लगाए चाहियो था तो थोड़ो मतलब थोड़ो चीजों जेके ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी वेंदियूं, पर तवां राजे टाइम लगायो ॾाढो मुनासिब वक़्तु हूंदो आहे। तो पंहिंजो मुंहुं जेको आहे न अच्छे तरीक़े सां साफ़ कयो, धो पंहिंजे हथनि खे साफ़ कयो, सफ़ा धोई साफ़ सुथरा थी करे पोइ तव्हां पंहिंजे चेहरे ते डॉक्टर पिंपल जो जेको ट्यूब आहे न इहो अप्लाई कंदा। जिते जिते दाणो आहे, जिते जिते निशान आहे, जिते जिते एक्नी आहे, जिते जिते पिंपल आहे, जिते जिते तव्हांजो कोई निशान आहे या जिते कोई सड़न जो निशान आहे, कट जो निशान आहे, उन्हनि सभिनी निशाननि खे तव्हां जमा करे उते सभिनी ते तव्हां डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब लॻाईंदा ऐं ट्यूब लॻाइण खां पोइ तव्हां छॾे ॾींदा। सुबुह जो उथी करे तव्हांखे दुबारा जेको पंहिंजो फेस वॉश करणो आहे ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिसंदा त बाबा तव्हांजे चेहरे ते जेको रिज़ल्ट आहे न उहो अचणु शुरू थी विया आहिनि, बाबा कमु स्टार्ट थी वियो आहे। सो तव्हां लाज़मी लॻाइजो, तव्हांजी ख़ूबसूरती वधंदी वेंदी। उन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो प्रोडक्ट आहे जेको सफ़ा असां सभिनी जो राज दुलारो थी वियो आहे, जंहिंजो नालो आहे व्हाइट एज जी लवली क्रीम। सो व्हाइट एज जी लवली क्रीम जे तरफ़ अगरि असां अचूं त हिन जे बारे में तव्हांखे नॉलेज हुजणु ॾाढी ज़रूरी आहे।
तो व्हाइट एज की जगह लवली क्रीम आए ना, ये तमाम जबरदस्त क्रीम आए व्हाइट एज की लवली क्रीम जगह है। ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन सा तैयार थे लाए जिसके अंदर ट्री वाइटामिन जा कैप्सूल मौजूद है समझो था, जिसमें हर तरह जो वाइटामिन तवां के मिली वेंदो, चाहे वो वाइटामिन B3 हो जे, वाइटामिन सी हो जे, वाइटामिन ई हो जे, वाइटामिन डी हो जे, हर वाइटामिन इन जे अंदर मौजूद है ट्री वाइटामिन साइन समझो था। उनका अलावा वाइटामिन सा भरपूर आए आई व्हाइट एज की जगह लवली क्रीम आए ना जे अंदर सनस्क्रीन भी मौजूद है आई सनस्क्रीन जका वह इन लाइ भई एड कई वही है इनके अंदर तुम इस्तेमाल कर खूबसूरती भी मिले तुम्हारी स्किन की हिफाजत भी थी सके। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम तुम इस्तेमाल कर खूबसूरती मिली तुम्हारी स्किन प्रोटेक्ट रही अगर कोई भी मेकअप नथा यूज करना चाहो तुम कोई भी अड़ो प्रोडक्ट नथा लगाए सको जो तीको ना गर्मी के मौसम में तुम डिस्टर्ब कह हो तो व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाए सको था जहाँ लाइट वेटेड है और मतलब इजी है जो फार्मूलो बस तुम डी जो लगाओ सुबह जो लगाओ मंझन जो लगाओ रात जो लगाओ जो टाइम दिल चाहिए लगाओ में कोई भी एज लिमिट ना तुम हर एज में लगाए सको था जो टेक्सचर है ना स्मूथ है ढी वीआईपी क्रीम है सो तुम लगाएंदा तो पान मजो अची वो सो व्हाइट एज की लवली क्रीम तो लाजमी ट्राई करी दिसजो जे मू ये सोचा तो बाबा असा नाइट क्रीम नथा लगाए सकूं असा फलाना हेवी प्रोडक्ट न लगाइंदा तो बाबा तुम व्हाइट एज की लवली क्रीम एक दफो मुझे चवण से लाजमी लगाए दिसजो। सो व्हाइट एज की लवली क्रीम तुम सब लगाओ सफा लवली लवली थी वनो उन गडो गड ही तमाम प्रोडक्ट है जे तुम इजीली लगाए सको था किथा भी वही पाने करीबी जनरल स्टोर से परचेज कर सको था अगर न भी मिलन था तो उन डायल कर जनाब 03 1579 0595 ही नंबर तवाजे आसानी से लाया है तवा पाने करीबी जनरल स्टोर पुछा करे सको था मिलन था तो बढ़िया नथा मिलन तो पोई तवा ने नंबर ते राबतो करे सको था ठीक है। सो राबतो कयो बाबा अवेलेबल कराइंदा वणो उनखा अलावा जेको आ न त हाँ तुम वही इजीली वी सो सो मुख्य ही वो गानों हलण हो तो हरू भरू हली वो ओके जी। सो प्रोग्राम है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कर वे पो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट किताबन से तुम्हारी सदरा तुम सा मौजूद है मूसा गड केर है बुधाइंदा वनो पा तुम मैसेज है तुम कॉमेंट है फेसबुक वो पोस्ट के लाइक शेयर कह हलो जो खबर पे बाबा जोश।

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी संडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? फजीला सिंधी, और उसके अलावा हैं हमारे साथ अरीबा। ओ प्यारी आपी जान, प्लीज प्ले ये वाला गाना। बिल्कुल सही, ये वाला गाना लगाते हैं आपके लिए। और मेरे पर खास है अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही। वालेकुम अस्सलाम बाजी। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइस है, सॉन्ग सुनाए शमन का। ओके जी ओके। एरम हमारे साथ है, कहती आपी मुझे भी सॉन्ग सुनाओ। जी मैं कोशिश करती हूँ सबके गाने लगाए। और ये मीरपुर खास से शुएब महर हमारा शो सुन रहे। शुएब आपको भी वेलकम करते हैं। अब्दुल्ला महर आप क्या कहते हैं कि बाजी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है, जबरदस्त क्रीम है। बिल्कुल जी, आप इस्तेमाल करते रहिए, ऐसे ही हमें बताते रहिए। और गुलाम शबीर तुनियो भाई है फ्रॉम कंबर हाई, आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून, हम भी अच गया आपके शो में। शो इज ब्यूटीफुल, आप ही सॉन्ग तो सुनाए मंजूर सही रानी की आवाज में है। अदमा ही गानो मुख्य मिलियो तो तवाज लहलायू था, ठीक है? और ये बेवस हमारे साथ है, बेवस जेडे बलूच दरगाह साईं जमाल शाह से। ओके जी, मोरो से आप हमें सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मौलाना सलामत बाजी, यकीनन आप ठीक होंगी और ऐसे ही हमेशा हंसती मुस्कुराते रहे। बहुत शुक्रिया भाई जान, आपको वेलकम करते हैं। ये हैं जी, अस्सलाम वालेकुम आप जान, आइए फादिली लाशारी। काफी टाइम के बाद आपके शो में शामिल हो रहा हूँ। टॉपिक जवाब में हर वक्त तैयार नहीं रहता, आज ओएसटी तो सुनाइएगा पोएट्री के साथ। ओके, और आपने सबको सलाम दिए हैं, तो वालेकुम अस्सलाम।

को शेयर करो। अच्छा, दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, घर जाके शो सुनूंगी, आप कहीं शायद बाहर हैं। वेलकम करते हैं स्वीटी को। और हमारे साथ जी, अच्छा कुछ कमेंट्स ना आप लोगों के ऊपर चले गए हैं, तो जिनके कमेंट नहीं मैं पढ़ सकी हूँ तो जरा काइंडली दोबारा शेयर कीजिए हमारे साथ। ये गाना किसी भाई ने मुझे फरमाइश कर दिया था तो उनको डेडिकेट करते हैं। अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम प्यारे भाई। गुलाम हुसैन हमारे साथ हैं, हेलो। इखलाक बलोच कहते नाइस यो आंसर बिना वजह रेडी असान जो कुराड़ियों थींदियूं आहिनि इन लाइ असां तयार ही नाहियूं थींदा। वाह वाह क्या बात है। अच्छा किशोर भाई कहते अदी बचपन का हमेशा दोस्त आस पास वारा पड़ोसी कदें भी साम्हूं ईंदा हुआ ये चवंदा हुआ बे खबर तैयार लगो पयो आही किथे वनी पयो छा जो साग्यो हाल अन्या ताई आहे यानी तवां की आदत आ हमेशा का तैयार रहण जी या वैसे सुठी गाल हुंदी थव हमेशा ये चिकना रहो जेको मानो डिसे ते चई डियो खबर लाडी वनी पछा भला।

अच्छा राजा खान भाई हमारे साथ मौजूद है। हेलो इमरान अली उजन भाई मुमताज मलाई बिल्कुल आपको सुनाएंगे। अच्छा मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे। सनोला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जमान वालेकुम अस्सलाम। वरियाम अली जतोई हमारे साथ मौजूद है। वरियाम कैसे हैं, ठीक ठाक। और ये फिरोज अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर भाई कहते हैं जे क्रीम में एतरा वाइटामिन सूंदा वा क्रीम तो लाजवाब हूंदी नी। बिल्कुल बाबा बिल्कुल, तमा इस्तेमाल जरूर कजो वाइट एसी लवली क्रीम। जे के चवंदा आहिनि त बाबा असां फेयरनेस क्रीम लॻाईंदा आहियूं, असां नाइट क्रीम नथा लॻाए सघूं। तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम आहे वाइट एसी लवली क्रीम। हाणे ॾिसो मां हर कंहिंजे लाइ हर हिकु प्रोडक्ट खणी आई आहियां। कोई चवंदो आहे असां साबुण आहे लॻंदा, असां फेस वॉश लॻाईंदा त हुनजे लाइ फेस वॉश आहे। कोई चवंदो आहे असां नाइट क्रीम नाहियूं लॻंदा, तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम आहे। कोई चवंदो आहे असां एक्नी वारो ट्यूब लॻाइण चवंदा, तव्हांजे लाइ एक्नी वारो ट्यूब आहे। त हर प्रोडक्ट तव्हांजे लाइ आहे बाबा। हाणे तव्हांखे भॼण कोन ॾींदासीं, तव्हांखे इस्तेमाल कराईंदासीं की तव्हांखे ख़बर पए त वाइट एज जा प्रोडक्ट मार्केट में आहिनि केतिरा ज़बरदस्त आहिनि। अच्छा हिदायत लगे थे टॉपिक, वैसे आजकल वजह बनी हुई है इतनी शादियां हैं कि बंदा तैयार ना भी हो तो रिश्तेदार तैयार कर ही देते हैं इतनी गर्मी में भी। ये तो वैसे सही बात है। अनवर भाई कहते शादी वाले दिन तैयार हुए थे, सही किया था या गलत आप बताए। सही किया था भाई। ओके जी, महर इरफान सियाल साहब कहते नाइस होस्टिंग मैम आरजे सिद्रा मुस्कान, बहुत शुक्रिया जी आपकी नवाजिशें। और आपको भी वेलकम करते हैं महर इरफान सियाल साहब। और टाइम आ चुका है यहाँ पर जरा न्यूज ब्रेक की जानब जाते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे। वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में। आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। टॉपिक को फॉलो करते रहिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे. अहिड़ी धमकी ज़हनी निवालपणी जनून ऐं जंग पसंदीअ जी अकासी करे थी. ज़िमेवार एटमी रियासतूं सहब स्ट्रेटेजिक संजीदगी जो मुज़ाहिरो कनि थियूं. भारतीय क़यादत ॾखण एशियाई मुल्क वई बुरान जा जंग तरफ़ धिकण खां पासो करे

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
0: 90.4 पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 03125252786
1: जी हा 2315525786
0: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण

0: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफ़ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: This program is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
5: मातली के हो तो आवाज़ बि मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
6: ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88.8 पर। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लारकाना की लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एंड स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो ये शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरतियां हासिल करते जा रहे हैं और अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो बढ़ाते जाइए जनाब खूबसूरती, कंहिं ना वणंदी बाबा हर कोई चाहींदो त असांजी खूबसूरती जेके न वधंदी रहे। तो तव्हां ॿुधाए सघो था जॾहिं तव्हां इस्तेमाल कंदा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो। ओके जी, अगरि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था, तव्हांजे ॻोठ में नथी मिले, तव्हांजे शहर में नथी मिले, तव्हांजी पाड़े में नथी मिले, त हुन जे लाइ तव्हांखे नंबर आहे जेको डायल करणो पवंदो। नंबर आहे 03 15 799 0595 0315 799 0595। ही नंबर तव्हां डायल कयो, जेको बाबा तव्हां डायल कंदा त तव्हांखे रिस्पॉन्स मिली वेंदो। नंबर ते तव्हां ॿुधायो त तव्हां प्रोग्राम ॿुधी करे आया आहियो, तव्हां पंहिंजे ॻोठ में अवेलेबल कराइण चाहियो था, तव्हांजे शहर में नथी मिले, व्हाइट एज जी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन जी प्रोडक्ट्स तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻाइण चाहियो था, तव्हां हुननि खे ॿुधायो जी तव्हांजी आसानी थी वञे, तव्हांजे लाइ अवेलेबल कराए वञनि। ठीकु आहे, सभ खां सवली ॻाल्हि, हुन खां अलावा अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो पिया त मूंखे ॿुधाईंदा हलो कहिड़ो प्रोडक्ट तव्हां लॻायो पिया। अगरि तव्हां अञा इरादो कयो आहे त बाबा एतिरी देरि इरादा न आहिनि कबा, बसि करे ॾेखारियो तॾहिं ज़िंदगीअ में अॻिते वधंदा। ओके जी, सो लुबना हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान लुबी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक ठाक कहती हूँ, आपके साथ साथ हूँ। आज कोई अच्छा सा सॉन्ग मेरे नाम करो और सलाम टू माय बेस्टी जी आली अब्बासी निदड़ी और सब क्यूट लड़कियों को। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। और निदड़ी बस गल्ला आई वरी सागो गुम थी वही, अलाए कड़ो मसलो आ छोकरी सा। और फजीला भी हमारे साथ मौजूद है। फजीला मेरी जान, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। और ये है जी, हाय बाजी, कल गाने जी फरमाइश मुनवर मोलाई जी आवाज में याद करो, नहीं चलाया था लाड़काना से आप हमारे साथ हैं। सोनारो बाजार खां इमरान अली बिरोही भा। इमरान भा बिल्कुल तव्हां जी गानो मतलब याद अचे थो, त तव्हां मुनवर मोलाई जो गानो चयो पर कहिड़ो गानो चयो इहो यादि नथो अचे, सो बिल्कुल ॿुधी वठंदासीं। और फहद देरी सऊद देरी फ्रॉम नवाबशाह सलामती अदी सफ़ा भलिया, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो। अरीबा की तव्हां पे ये गाना तो लॻाए, बिल्कुल जी आप ही गाना लॻाती आप ही लिए, बस तव्हां थोरो सबर कंदा कयो। और इरम भी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। बेवस जेड ए बलोच हमारे साथ ही कहती दरगाह साईं जमाल शाह बांदी रोड मोरो खां। अच्छा कहते हैं, गुलन भी घाव डिना त कंडन खे छा चवां, मां पंहिंजा पंहिंजा न थिया त धारन खे छा चवां मां। इहा हक़ीक़त अथव अला, बसि कंहिंखे बि कुझु बि न चओ, बसि मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधो। व्हाइट एज जा प्रोडक्ट लॻायो, डी स्किन जा प्रोडक्ट लॻायो, बसि सुहिणा सुहिणा थी वञो, ॻाल्हि ई ख़तम। और गोठ मोहम्मद तैयब थेबू खां बि भला थेबू, तव्हांजो शो वेरी नाइस आहे। वालेकुम अस्सलाम प्यारा भाउ, मोहबतूं आहिनि तव्हांजो। कुझु कॉल्स वठी वठूं था, न त बाबा इहो ॿुधण में ईंदो त सिदरा गालियूं नथी वठेव, ॾिसो सिदरा गालियूं वठे थी वठे थी वठे, अदा तव्हां बि ॾाढो सही। ओके जी, सो कॉलिंग नंबर 0333213228, तव्हां बि बिल्कुल कॉल करे सघो था। ही वारी कॉल वठूं था, ॾिसूं केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: केरु अदो असां सां गॾु मौजूदु आहे? चलो जबरदस्त जबरदस्त, ॿुधायो त कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया?
1: हा माशाल्लाह भाजी, अचो सभु वठी आया आहियूं, इहो साबुण
0: साबुण वठी आया आहियो, ज़बरदस्त। ऐं मूंखे ॿुधायो त इस्तेमालु कयो अथव या अञा पोइ कंदो?
1: हा बसि इस्तेमालु हाणे शुरू कंदासीं।
0: चलो
1: भाजी,
0: जी जी ॿुधायो।
1: ब्यूटी साबुण भलो ख़ुशबूदारो ब्यूटी साबुण भलो ख़ुशबूदारो।

0: চুপিয়ে পাপর ভালোবা খুশবু তারোয়া চুপিয়ে পাপর ভালোবা খুশবু তারোয়া
1: वाह वाह वाह वाह छा गाल कदे केड़न दोस्तन के याद कंदा ओके ओके ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा बात आंजो मोहब्बत लास्ट में थोड़ो ताजो आवाज कटजी वयो वाह सही भाजो टैलेंट डाडो भलो आयो डाडो वीआईपी वीआईपी गाना बुधाइंदा ना सजे प्रोडक्ट थे सो तमाम भी कॉल करी सको था कॉलिंग नंबर आई 0332123228 नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: के रस सगडा
2: सीमा लारकन
1: था नालो बुधाजो
2: सीमा
1: सीमा सीमा छाला खुश आयो
2: जी जी सा बुधाया
1: मां भी मजे में प्रोग्राम बुधो प्या सीमा कुछ भी न माना बस बाहरे बने थे अच्छा मुझे यो बुधायो तो तुम प्रोडक्ट को इस्तेमाल कयो आज के बुधाया पई चलो लाड़काने भी तो मिलन था रेशम गली वंजे ना वठी अचो वनी इदई शॉपिंग न कई दई छ अन्या
2: न न तैयारी करना वठी न
1: हां वने शॉपिंग करना त वठी जा वाइट एज क्रीम या वे डी स्किन जी वाइट एज लवली क्रीम वठी अच जा चलो सीमा बे ओ छा चवंदो ये
2: डॉक्टर कान कन
1: जी जी शामिल क्यों
2: मुझे आपकी कहानी प्रोग्राम मुझे लिया
1: जी
2: आई लेना करू
1: हम
2: पार्टी में कहानी प्रोग्राम मुझे तू
1: जी
2: सिद्रा मुस्कान के प्रोग्राम बुझे थी
1: जी सिद्रा मुस्कान भी प्रोग्राम बुझे थी चलो चलो सुठी गाल माशाल्लाह थैंक यू सो मच सीमा तुम प्रोग्राम में कॉल कई जी जी चलो थैंक यू सो मच थैंक यू भाई सिद्रा मुस्कान भी असो प्रोग्राम बुधे भाई कॉलिंग नंबर आए 0332123228 नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केड़ो भास से गडा
3: अभी अली कुल चवल तो गलाया नवाब शाह
1: का कॉल किया खुश आयो भा प्यारा
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी दो मन जी तो खुश आयो
1: माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया प्रोग्राम बुधो प्या प्यारा भा नंबर प्रोग्राम बुधा नंबर से कॉल कर जी बिल्कुल बिल्कुल कॉल तो करो न
3: अभी मां गोल चक्रा मां पुछा कयो कोन तो मिले नवाब जा गोल चक्रो जे गोन उता पुछा कयो कोन तो मिले
1: चलो ठीक है ताजे गोठ में अवेलेबल कराना तो जेको नंबर ताक बुदा तो नंबर दे तवा राबतो जरूर कजो एकडो दफा
3: जी हां आदी वलवाता ना कदा तो पुछे तो भाऊ मजो सजादला जमाली
1: जी जी
3: अली अदर जमाली अली दोस्त जमाली अदी असा प्रोग्राम गची बुदाऊ ता
1: थैंक यू ता भाईन जो मोहब्बत हुआ नी ये मोहब्बत चा असा प्रोग्राम बुदा रहो आई ता प्रोडक्ट भी लाज नी लगा जो थैंक यू प्यारा भा खुश रहो ही सुकून बाबा सदाई खपे प्रोग्राम तां बदो पयाई नेक्स्ट कॉल वठू ता दिसू ता नेक्स्ट कॉलर के जैसे सगड़ माटू ता हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: करे आलम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक के जैसे सगड़ माटू ता
2: बस
1: एरम बस एरम शो
2: बस मैं
1: ता आने वाले बस आ आई ली बस एरम खेल लगो प्या तू खुश लगी पई आ अम्मा खुशा अम्मा खुशा अच्छा एरम बुधाया वया आयो मार्केट को चक्कर बकर रहयो था इदई शॉपिंग कई था वठी आयो प्रोडक्ट जके बुधाया थी
2: हां इने मतलब दफा कॉल कई से दफा कॉल आया से मार्केट में फोन थी मिले फोन सब फोन दे तो कॉल आया
1: ओडे वने ना ओडा मिलन थई शिकायत खड़ी आया तो सर पवन कुमार वट न मिलो आ प्रोडक्ट चलो तिकायत गौर कर चलो ठीक आ चवना सर पवन कुमार के बाबा रखो क्रीम यू वठण वारा जके न उता वटा वठी वेनव वञु न जंहिंजी सिक हूंदी त वेंदा ॾिस तूं पंधु करे थी न साॻोई चलो चलो एडम थैंक यू सो मच तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई ॿियो छा चवंदी चलो थैंक यू सो मच ॿियो छा बस मिंट साहब ख़ुशि आहे कहिड़ो कहिड़ो ॿुधाए हा सुभाणे हलायां भला हाणे त टाइम ख़तम थी वियो
2: आहे
1: चलो ठीकु आहे थैंक यू सो मच मुंहिंजी प्यारी बस हेड़म तव्हांजी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में बिल्कुल जी प्रोग्राम में हाणे असां कॉलिन खे थोरो स्टॉप लॻायूं था छो त बाक़ी वञी 5 मिंट बचा आहिनि असांजे प्रोग्राम में सो इहा असांजी प्यारी इरम हुई ऐं वीचारी जेको आहे न ॾाढा पंध कंदी आहे जेके प्रोडक्ट लॻाइणा हूंदा अथसि वञी वठी ईंदी आहे जितां किथां ॻोल्हे सो बिल्कुल तव्हां बि मोहबत कयो बाबा पंहिंजे चेहरे सां पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु रखो ऐं वाइट एस्ट जा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु करे सघो था ऐं डी स्किन जा प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु करे सघो था तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदा तव्हांखे प्यारो सुहिणो बणाईंदा ऐं तव्हां सां वा चिमकंदा वधंदा सो कॉलिंग नंबर आहे जनाब कॉलिंग नंबर जेके तव्हां राबितो कंदा उहो नंबर आहे 0595 0595 हीउ नंबर डायल कयो जी तव्हांजे क़रीबी जो हिन स्टोर ते बि हीउ प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वञनि अच्छा किशोर भाई कहते कि दुआ खां धाॻो कराए ॾे बाक़ी खे दुआ खां वाके धाॻो कराए ॾियणो पवंदो तव्हांखे तव्हांजी कॉल छो नथी लॻे

अच्छा अच्छा मुनव्वर मौलाई जो इमरान भाई गानो चयो हो मरां त के लाए मरां बिल्कुल बिल्कुल यो गाने ताजो हलाईंदासीं पर ॾिसो कॾहिं था हलायूं और दारावन से डॉक्टर राम फकीर हमारे साथ हैं जे एम जोगी फकीर हाय सजरा डियर आप कैसी हैं प्लीज प्ले आबिता परवीन जी ओके मैं कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश भी लगाएंगे बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा नेमतुल्लाह जतोई है नवाब जतोई है बहुत शुक्रिया जी बोथ ऑफ यू

हाय इरशाद अहमद शाह हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, न्यू दिल्ली से हमारे शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। अकबर भुट्टो हमारे साथ हैं और आप शो में शामिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वफा मीर मुनव्वर हमारे साथ हैं, हेलो। सैयदा बुखारी हमारा शो सुन रही है, सैयदा बुखारी वालेकुम अस्सलाम कहती है। हाँ जी, बड़े दिनों के बाद आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है, सो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि आप डेली बेसिस पर हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हो सके, ठीक है। हिदायतुल्लाह कहते हैं सदरा तोखा सवा, किसी और का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत बोले, बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और ये आदिल हुसैन कहते हैं प्रोग्राम सफा भल्लो आहे। बिल्कुल जी, प्रोग्राम तो भल्लो आए, पर जडी तवां ही प्रोडक्ट जेके बुधाए नी प्रोग्राम में वो इस्तेमाल करना तो पोए तवां भी दाडा भल्ला थी वेना। सो ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो जी, सुणा सुणा सफा सुणा थी वेनो। उन अलावा असानी पोस्ट के लाइक शेयर कर जिन अना ती को है। अनवर भा बिल्कुल हाँ मोकलानी जो वक्त सफा करीब अची चुको है, ओ इत सामू अजे बीठो है। सो हाँ बिल्कुल तवाजाजत वी वरी इनशाला तवा से मुलाकात मुझे सुभाने वाले प्रोग्राम में थियण वाली है, एक बजे का टे बजे तुम साथ हों जॉइन करना बुध न विसारींदा। किथे का गलती थी हुए तो माजरत कया भाई सैया। सो मोकलानी ना बाबू सिंह सलामत सलामत हाफिज, बबाई, लव यू ऑल।

0: mi sejtan gatun itas dihat.
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: Jadeh maa paanjo khayal rakhan diya hai, ta sehat naslan tain halan diya hai. Hii pegaam Kash Foundation and Canadian Government je tarfaan pesh kayo vayo.
0: पंहिंजे पहिरीं इनिंग में 288 हुयूं बांग्लादेश जे पाकिस्तान खिलाफ़ 98 जी लीड सां ॿी इनिंग में बैटिंग जारी पाकिस्तान ॾखिण एशिया जी तारीख़ नक्शे तां ख़तम न थियण वारो हिसो आहे भारतीय आर्मी चीफ जो चिड़ ॾियारींदड़ बयान ज़ाहिर करे थो त भारतीय क़यादत पाकिस्तान जे वजूद वारे तस्वुर खे क़बूल नथो करे सघे भारत खे पाकिस्तान जे में तस्लीम कंदे पुरमन गडि॒यल बका जो रस्तो अख़्तियार करणो पवंदो भारतीय आर्मी चीफ जे हाणोके इंटरव्यू में बयान रदअमल ज़ाहिर कंदे ISPR जो चवण आहे त हक़ जी जंग दौरान भारत जी मायूसी समूरी दुनिया में वाक़ी थी पाकिस्तान पहिरें ई आलमी सतह ते अहम मुल्क ऐं हिकु तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे अहिड़ी धमकी ज़हनी निवालपणी जनून ऐं जंग पसंदीअ जी अकासी करे थी ज़िमेवार एटमी रियासतूं सभु स्ट्रेटेजिक संजीदगी जो मुज़ाहिरो कनि थियूं भारतीय क़यादत ॾखिण एशिया ते हिकु ॿी बहरान जी जंग तरफ़ ॾेखण खां पासो करे

0: सदर आसिफ अली जरदारी चवाए इंतबाद जोगी राबतेकारी मुआशी तरक्की अवामी खिदमत के हथी डेण लाइ अंटर आ डिजिटल राबता अज तालीम सेहत व्यापार अवामी खिदमत की बुनियादी जरूरत बढ़ चुका है। पर्यावरण इलाकों में डिजिटल पहुंच मुआशी मौकन जान तई पहुंच जो अहम जरियो है। टेली कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सोसायटी के आलमी दिहाड़े से सदर जरदारी आई टी वजारत पीटीए मोबाइल ऑपरेटर की खिदमत की वाखाण कन्दे हुकूमत समूरे मुल्क में डिजिटल पहुंच राबतन के हथी डेण कोशिशों वी रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पैंजे पैगाम में नेशनल एआई पॉलिसी 2025 एक इनकलाबी कदम है जो पाकिस्तान में एतराद रुझान के माहौलियाती निज़ाम की तरक्की के जामिन है। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तरक्की कर रो है। 5G स्पेक्ट्रम के कामयाब ए शफाफ नीलामी डिजिटल पाकिस्तान तरफ अहम कदम है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ए शिफाफ पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।
7: अवाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहयो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
7: 6 लीटर पानी की बोतल ब्यू पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहयो आहे।
6: उनका अलावा असा वट रिफल जी सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे।
7: अवां जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
6: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणी असा सा राबतो करियो। असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जेमे
7: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बिया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंझंद 2 वगे का रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
7: गायनोकोलॉजिस्ट औरतुन जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ्ताब
6: डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वगे का शाम 4 वगे ताई डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे का 1 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा।
7: डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे डी मंझंद 2 वगे का 3 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल
6: मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस

0: માં આશા અસ્પતાલ નોતકાણી ચોક માતલી. વધિક માલુમાત લાય 2-347-32-41-200.
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन.
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
2: 03125252786.
1: जी हा, 2-381-2525-786.
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़.

0: વાહ સહી વાહ. અજય સમય આવા બધી લોક ધૂન અજ મેં અસાખે બુધાણ વાયા હવા સુગર ફકીર અલગોઝ નવાઝ અબ્દુલ મજીદ ચાંડો સાહેબ. અજય સમય હી એક તમામ ખૂબસૂરત લોક ધૂન હુઈ જેકા અસાખે અબ્દુલ મજીદ ચાંડો સાહેબ બુધાઈ. સમય હી પ્રોગ્રામ જી એફ એમ નેટવર્ક જે તસલસલ સા અસાજે 8 એફ એમ ચેનલ્સ થે કનેક્ટ આહે. માં જો પેંજો મેઝબાન સલીમ અહેમદ સરગાણી. સમય અસા સા ગડ સિંધ જા મશહૂર મારૂફ ભલોડ સુગર મોજૂદ આન. બિના કે દેર જે અસા પેંજન સુગરન તરફ હલો થા. હાણે અસા હલંદાસી અસા જો મશહૂર મારૂફ સુગર સાઈ ઉસ્તાદ મંઠાર અલી બુગ્યો સાહેબ તરફ જેકે અસા કે ખુદા જે દિને માં કુછ ઉધાઈદા. અસલામ અલૈકુમ સાઈ.
1: निहायत ही थोरायत आया एफ एम वारन जो जिन्हें ये प्रोग्राम शुरू किया है तसलसल आए गुड़ो सिंध के कल्चर जो लोक अदब जो बोली जो जैसा इन्हें वा गुर्ब क्या वड़ क्या आडो असाजे ईद उल उजा भी अचे पी दिल कटे पी तो कुछ चंद सिटू उन तरफ वना एफ एम ते अलाह कया इलाही आन एहसान जो सजी सिंध में पैं बोली जी प्रचार तो कर सलीम सरगानी सकरन में विजोधो आए जवान जै सुगड़न के सिंध में आए मर्द दिनो मान सुगड़ भला सिंध जा सब खाशा खान के आया के ईंदा के वया के वींदा आए फायक जो फरमान अग्या ईद अचे पे उजा जी दिस थियो पे कामिल नबी कुर्बान उन अलाए आका आगे आए फरमायो मज फुरकान जी जै सुनत कई हजरत इब्राहिम जी अला पाक थियो इंसान जेको पासे रहे पंतन पाक जे उन ते राधी रब रहमान सुगड़ सोड़ा सिंध जा ऐं सकरनि जा कनि था बारीअ जो बयान अॼु एफ एम जो अदा आहे ॿुधियो मंथार थियो महिमान तंहिंखे दाता ॾींदो दान हूंदो मशर में गॾु महबूब सां थोरायतो आहियां शुक्रगुज़ार आहियां साईं सलीम सरगाणीअ जो जेको पंहिंजे हिन बाक़ाइदे प्रोग्राम खे तरतीबवार हलाए पियो अॼु जॾहिं मूंखे बि सॾु थियो त मूं बहादुरी ॾिनी छो त मुंहिंजी नौकिरी आहे पंजनि ॿारनि जी तारीफ़ ऐं तौहीद करण जी ऐं सुगड़नि जी नौकिरी जेके सिंध जा सभा जा सुगड़ आहिनि ऐं हमेशह चवंदो आहियां उहे सभु मूंखां भला आहिनि ऐं कंहिं जहिड़ो न कंहिं जेॾो छो त मूंसां जेके बाह बेलीअ जे हिन प्रोग्राम में सुगड़ आहिनि उहे बि अजीब सुगड़ आहिनि ऐं उन्हनि खे बि मां सम्झा थो मूंसां खोड़ सारो टाइम थियो आहे ऐं एफ एम खे बि उन्हनि तमामु घणो वक़्तु ॾिनो आहे जीअं उस्ताद गुलबेग जमाली मोहम्मद इदरीस जमाली हाजी नवाब संजराणी गुलाम अहमद संजराणी साईं मोहन कासिम दाहिरी हिदायत अली रिंद गुलाम सेन लुंड अब्दुल मजीद चांडियो नजन खोसो केतिरनि जा नाला वठां सभु माण्हू भला आहिनि पर आहे सॼी ॻाल्हि सम्झ जी छो त कंहिं फ़क़ीर जी सिट आहे त सूर आहे सम्झ खे बेसम्झ सां बात करणु आहे अजाई घुमी ॾठ में घिटियूं त कान्हे यारनि में वफ़ाई पंहिंजनि मां परूं कर वेही सुहिणा आहे सचाई मोहबत वेही मामनि मां ऐं चाचा कनि चङाई प्रीत वेही पाड़े वारनि मां वेही राजनि मां राजाई ज़मीदारी वेही ज़मीदारनि मां वही कमदारनि मां काराई फसल पिटा बननि कया वही ज़मीनुनि मां ज़ोराई राहुनि ते रही न का घुरल आहे बटाई तोर वेही दुकानदारनि खां जेके सोना ॾींदा सवाई बरकत वेही बस थी जॾहिं थ्रेशर आहे आई जॾहिं थ्रेशर आहे आई प्यार न कर पुलिस वारनि सां कंद भाॻियनि सां भलाई चमा चोर खे गिराटी पाई त अशराबनि घर अधु राति जो चढ़ी कंदा चढ़ाई इंसाफ वयो अदालत मां बंद थी वकीलन जी वाई जजन हणे जुग कया भी ॾिसो क्लर्कनि जी कमाई ॿिनि साल में बंगलो बनियो इजा कार बि आहे आई त महिनत वेही मज़दूरनि मां वही अफ़सरनि मां अफ़सर आई साइडन कंदा साल में कंदा कागज़नि कूड़ी कारवाई साइडन कंदा साल में कंदा कागज़नि कूड़ी कारवाई सच चवण सभु कंहिंखे आहे ॻाल्हि अजाई होटल ते हर को थो करे ॾिस टिपी यार टेड़ाई होटल ते हर को थो करे ॾिस टिपी यार टेड़ाई त जलाल मंज़ूर खान कोन वणे तूं जलाल ॾिजांइसि जाई जे बेसुरी वॼंदी बेसुरी त बि चवंदा वाहजी अथसि वॼाई ओ पान चवंदा पप्पूअ खे तूं चांहि चङी अचु चाई मनछार माण्हुनि जी मूंखे कल पवे न थी काई तूं बुघिया कढ ॼाई त सम्झे कंहिंजे सूर खे सभा जा सुगड़ सिंध जा सिंध खिका छे ख़ुशी थींदी आहे त सुगड़ वीचारा ख़ुशीअ खे चिटींदा आहिनि जे ग़म थींदो आहे त उन ग़म खे चिटींदा आहिनि असां वटि अलाह जो महिरबानियूं आहिनि चार मौसम हूंदियूं आहिनि सिरो बहार उन्हारो सियारो पोइ उन चइनी मौसमनि में जेको रंग थींदो आहे अलाह जे पाक ज़ात जे तरफ़ां सुगड़ उन चइनी रंगनि खे चिटींदा आहिनि जॾहिं राति थींदी आहे त राति जे सितारनि खे चिटींदा आहिनि जॾहिं ॾींहुं थींदो आहे त सूरज जे ताप खे चिटींदा आहिनि पर ख़ासि करे जॾहिं बननि ते वेही हिक ॿिए सां पंहिंजे सिंध जे गुझ जूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त उन्हनि खे वरी गुझार त चइबो आहे मुंहिंजे साम्हूं हिकिड़ी गुझार त अचे पई दिलि कढे पई त आऊं सुगड़नि जे सथ में वेठो आहियां त उहा गुझार त पढ़ां त ॾिसूं पाण उहे सुगड़ उन गुझारत खे कीअं था ॻोल्हनि गुझारत में अर्ज़ु थियो त जॾहिं मारवी क़ैद में आई त उमिरि खे चयो पियो अदा मूंखे छॾ त मां पंहिंजे वतन वञां उमिरि जो जवाबु आहे त मारी तुंहिंजो वतन हींअर ततल आहे तुंहिंजो वतन भिणभांग आहे सुञू आहे हिते तोखे महल आहिनि माड़ियूं आहिनि नौकर आहिनि चाकर आहिनि खाधा आहिनि पीता आहिनि तूं वतन जी आ छो थी करीं साईं सलीम जेॾी महिल मारीअ खां इहा ॻाल्हि हुन पुछी त मारी चयो अदाड़े उमिरि जेकर तूं मूंखे छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे
2: ॾींदासीं
1: बंदि गुजारत जा टई ज़ातियुनि जा सुगड़ पाई जी ॾात आई अलाह जंहिंखे बख़्शे पर सुगड़नि जे साम्हूं आऊं उमेद थो करियां जेकॾहिं अखर सुठा हूंदा ऐं सोयल भली ॻाल्हि हूंदी त सुगड़ जे साम्हूं उहा गुजारत बीह न सघंदी ज़रूर पंहिंजो मान माणींदी गुजारत में अर्ज़ु थियो त अदाड़े उमिरि जेकर तूं मूंखे छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे ॾींदा
2: वाह सही वाह हुया सुगड़ फ़क़ीर मंठार अली बुघियो साहब जिन्हनि गुजारत ॾिनी आहे जेके असांजा ॿिया असुगर दोस्त ॻोल्हींदा अजी साईं बिस्मिल्लाह
3: हा उस्ताद मंठार गुजारत अवी पढ़ो
1: अर्ज़ पे कयमि
3: जी
1: त अदाड़े उमिरि जेकर तूं छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे ॾींदासीं
3: ज़ातियूं विझी ज़ातियुनि में
1: जी जी
3: वञी ज़ातियुनि खे ॾींदा
1: वञी ज़ातियुनि खे ॾींदा
3: वाह रे वाह तूं ईअं थो चवी त मारुई पीउ चवे त अदा उमर से हड़ राति जा हिन
1: सीहड़ो
3: से हड़ इन गंढन में विझी मां वञी फुल अख़्तियारनि खे ॾींदी
1: आहे
3: कातियारनि खे राति जा कातियार चथो कातियारनि खे ॾींदी
1: आहे
3: भला ईअं बि तूं चवी थो त इहे सलाम पैगाम मान ख़त पटन में विझी मां दामर इन मलीर
1: मोकिलींदीसीं
3: वञी आथर मोकिलींदीसीं ज़ात जा गंवार बि चवे थो मथां चवे थो अदा उमर हीअंर जेके बरसातियूं मींग मल्हारियूं थियूं अदा उमर इन्हनि खे मां सलाम ॾींदुसि वञी मुंहिंजे इन रेढारनि पहवारनि इन गंवारनि खे
1: ॾींदी
3: अञा हिकिड़े चकर पढ़ो
1: अर्ज़ु पे कयमि त मारी उमिरि खे चए पे अदाड़े उमिरि जेकर तूं छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे ॾींदासीं
3: واڑے وا ذاتیوں وجی ذاتن میں ونی ذاتن کے دین دیا اسا
2: واہ صحیح واہ تمام زبردست اسا جے سندھ جے بھلوڑ استاد استاد منٹھار علی بگیو صاحب جن دی گزارت ہے جے میں ماں دسا تو پیو تے جے اسا جے اسٹوڈیو میں سگڑ بیٹھل ہیں تو انن کے خبر پجی ونے پئی تے اسا سا سگڑ موجودن سامن وقت جو اسا ساڈا ٹری تھن پیا ساڈے 3 وگے وٹھن اسا کمرشل بریک پہلی ہلو تا اسا نڈڑے شارٹ کمرشل بریک طرف تواں کے کیڑن آے وجنو بدھندا رہو جی ایف ایم نیٹورک اساں اچوں تھا نڈڑے شارٹ کمرشل بریک کھا پو اساں جو آواز ساتھ رہندو پورے 5 وگے تانی تا اساں اچوں تھا نڈڑے شارٹ کمرشل بریک کھا پو
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
5: السلام علیکم, میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں. میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں, چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں. یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں.
6: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: तंहिंजो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: गुलबेग जमाली साहब जिन्हनि गुजरात खे ॻोल्हियो। अच्छा साईं मंठर साहब, गुजरात खे हाणे सॼो करियो, असांजे सामान खे ॿुधाईंदा, छो जो तव्हांजी वॾी महिनत आहे जंहिंमें असांजे सुगर फ़क़ीर गुलबेग जमाली साहब जिन उन्हनि खे ॻोल्हे वरितो। बिस्मिल्लाह साईं, सॼो कयो।
5: बिल्कुलु सलीम साईं।
4: जी साईं,
5: हीअ सुगर पाई जी हिकड़ी पहिरीं स्टेज आहे।
4: बिल्कुलु बिल्कुलु,
5: जंहिंखे पाण गुजरात चऊं। गुजरात जी ॻाल्हि,
4: जी जी,
5: मारीअ खे उमिरि चयो त तूं हिते भली आई, हू चवेसि पई मूंखे छॾ त वञा पंहिंजे वतन, पर ज़ातियुनि जे हिसाब सां त आऊं ज़ातियूं बि जी ज़ातियुनि में वञी ज़ातियुनि खे ॾींदासि। ज़ात जा हिन बबुर चयो त उहे पलड़ा या संगर चूंडे, पोइ हुन खां पोइ पाण फुरमायूं त इहे बबुरड़ा ज़ात जा बबुर, ॿिया ज़ात जा छजड़ा, टिया ज़ात जा हिन लयल। उमर चवे त बबुर छजड़ा लयलनि सां मारी तुंहिंजो कहिड़ो वास्तू? चवेसि पई न दा उमर, मूं हीअं न, मूं हीअं चयो। कीअं भला? चयसि पई जेकर तूं छॾी त आऊं इहे बबुरड़ा रोड़े छजड़नि में विझी वञी लेलड़नि खे।
4: वाह वाह साईं, वाह वाह साईं, वाह
6: साईं, वाह
4: वाह उस्ताद, वाह वाह
5: वाह। त ॾिनी आहे सुगड़नि खे ऐं पाण उन्हनि खां खोड़ सारियूं सुगर पाई जूं भलियूं भलियूं ॻाल्हियूं ॿुधंदासीं।
4: वाह साईं, वाह ज़बरदस्त। सामान इहो आहे असांजा भलोड़ उस्ताद मंठार अली बुगियो साहब। जीअं समीन हाणे हलंदासीं, असांजो सुगर फ़क़ीर आहे गुलबेग जमाली साहब, जिन्हनि खे मां ऑलराउंडर सुगर चवंदो आहियां। साईं जन बीन बि वॼाईंदा आहिनि, सभु कमु कंदा आहिनि, यानी ऑलराउंडर सुगर आहिनि। उस्ताद त मिड़ी उस्ताद हूंदा आहिनि, पर हर माण्हू जो पंहिंजो हिसाब किताब हूंदो आहे। साईं मंठार साहब जी वॾी महिरबानी, जिन असांखे हिकु सुठी गुजारत ॿुधाई। हाणे हलंदासीं, असांजो भलोड़ सुगर आहे गुलबेग जमाली साहब तरफ़, जेके असांखे ख़ुदा जे ॾिने मां छा था ॿुधाइनि। साईं अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम बाबा साईं।
4: साईं कहिड़ा हाल आहिनि?
7: अलहमदुलिल्लाह दुआ रम बाबा साईं। सलीम साहब ख़ुशि आहियो?
4: अलाह जा एहसान। तव्हां ॿुधायो कीअं पियो लॻे?
7: शुक्र अलहमदुलिल्लाह बहितरीन।
4: भलीकार चऊं था, हीअ अॼोको असांजो प्रोग्राम GFM नेटवर्क जे तसलसल सां असांजे सॼे नेटवर्क ते कनेक्ट आहे। तव्हां असांखे ख़ुदा जे ॾिने मां छा ॿुधाईंदा साईं?
7: साईं असां बि उस्ताद असांजे वॾे मंठार फ़क़ीर बुघे गुजारत पढ़ी सुर उमर मारी में, हाणे वरी सुर लीला चरेसर में मुंहिंजा अखर थींदा।
4: बिस्मिल्लाह।
7: त उस्ताद जा फ़क़ीर जेके गुफ़्ता पंहिंजा ठाहिया, उन गुजारत जा अखर आहिनि त उज़्बे ते उज़्बे जी या औरत माण्हू जा ॾिसो। सुर लीला चने सर
4: जी बाबा,
7: लाइव प्रोग्राम पियो हले सलीम साहब, हाणे उन जे हिसाब सां असां सुर रखी था पढ़ूं।
5: जो
7: टाइम थोरो हूंदो आहे उस्ताद, उस्ताद मंठार, उस्ताद मोहम्मद कासम
5: जी जी,
7: बहितरीन सुगर वेठा इनशाला ताला। त गुजारत जा अखर आहिनि त उज़्बे ते उज़्बे जी या औरत माण्हू जा ॾिसो।
5: उज़्बे ते
7: उज़्बे ते उज़्बे जी या

0: रुपए जी आ
1: हाँ और तमानु जा दिसो
2: हैं नजरते नजर आ
1: बच्चे उस्ताद
0: उस पे ते
1: हाँ उस पे ते
0: टिकने ते
1: बच्चे
0: चौंक ते
2: हैं नजरिये ते
0: सरिये ते
1: बच्चे
2: सरिये ते
0: हैं दिल ते छाती ते
1: दिल छाती का बच्चे
0: हाँ हैं पब्ब पैर ते
1: बच
0: हाँ
1: बच्चे
0: उस पे जी आ
1: सुरलीला चने सर आए तो उस पे ते उस पे जी आ औरत मानू जा दिसो
0: औरत मानू जा दिसो मानू जा दिसो
1: हाँ
0: मानू जा चाला कर दिसो
1: भाई बच्चे
0: उशार दिसो
1: बच
0: अकाबर दिसो
1: बच
0: वकील दिसो
1: बच
0: आलम दिसो
1: बच
0: स्याना दिसो
1: बच्चे से
0: दाना दिसो
1: बच
0: हल भना जमाली
1: हाँ सही परावा अखर है ना उस्ताद मंतार गुज्जा पराओ गुज्जा
2: बिल्कुल बिल्कुल है ना मैं कोई शक
1: को शक ना है
2: गुज्जा के गुज्जा
1: उस पे ते मोहम्मद कासिम डारी
0: जी
1: हाजी नवाब खान अब्दुल मजीद भी पान से गड बेहतरीन सुगड़ बैठल है पर हाँ गुजार जा अखर है ना तो उजबे ते उजबे जिया ओ औरत मानू जा दिसो
2: ओ हन जा लक्षण दे दिसो
1: बच्चे उस्ताद
2: अरकान दे दिसो
1: बच
0: उजबे ते
2: हन छाती ते
1: बच्चे
2: तरिया
1: बच्चे
2: पर हन दिल ते
1: बच
2: हथ
1: औरत मानू जा दिसो
2: पर ये चवे ते ही मुझे ज़बान जेका है उहा मुठ में आ
1: मरी वई उस्ताद त लगे ताड़ी
2: वाड़े
1: मंठार
0: वाह मंठार वाह
1: वाड़े वाह
3: साईं वाह उस्ताद गुलबेग वाह उस्ताद मंठार मारी
0: वाह उस्ताद वाह वाह उस्ताद वाह ई उंदा उस्ताद गुजरात के माना बिंटन मिंटन में गोले उते ही उने के मारे छड सामिन हाँ असा गुजारिश कंदी साई गुलबेग जमाली साहब जन के जेके सजो कर गुजरात के साई मंठार साहब जन की मेहनत है इन मिंट में गुजरात के गोले वो जी सही सजो कर
1: हाँ से गुजरात सलीम उस्ताद मंठार गुजरात मुझी मारे वो उस्ताद मंठार अखर है न
0: हाँ जी
1: अर्थ जा अखर है न तो उजबे ते उजबे जी या औरत मानू जा दिसो उस्ताद मंठार जड़न उस्ताद ने जा असा भत धोराया गुजरात आऊं पांजी ठाहे पांजी पढ़ंदो या बेजी गुजरात न पढ़ंदो सुर लीला हाँ लीला तो बादशाह दादी हुई पर हार डिसी कौरू वट पांजो मुड़स चनेसर बादशाह के विकणी हार ते खपाए हाँ जडे जो घर मोटी आई आ चनेसर बादशाह के तड़े बहर कड़ी छो तो मुँह मुड़स के हार ते खपायो मां बादशाह हो सर जे तू मुसा गाल करी आ ते एड़ा सौ हार मां तो के वटी दिया ही ते का हार तू हार ते तू चरी थी पई आई
2: बराबर
1: हाँ हिन के चनेसर बादशाह घर मां तड़े बर लिहोर जे शहर मां कड़ी छो हाँ हेडा वे पांजे माँ के घर तो माँ बहर तड़ेस वरी उतां अचे तो वरी चरेसर बादशाह तड़े बहर कढ़ेस लिहोर जे बाजार में मोहम्मद कासम उस्ताद मंठार लीला बादशाह लादी आ पर ही रुगो रोए पई रड़े पई अचे पई वे पी बाजार में
2: लीलाए पई
1: हाँ अचे पई वे पई अचे पी वे पई तो ओड़े पाड़े जो मायू बाजार में बीठी वन अकुल वारियो ओए एक बे के पियो चवन ही तो बादशाह दादी लीला आया जिजन के छा थी आ जो लिहोर जे बाजार में रुले पई जे रोए रड़े पई दाऊ पई करे उतां जे औरत हिकड़ी बेन के का सियाणी औरत के ने गाल जी खबर हुई उन जो तो तोखे अधी खबर ना है तिन माई केड़ो किरदार कम कयो आ जे मुख्य खबर ना है जे मुख्य खबर ना है पो हन लीला सा हाने ओहा औरत पई गाल आयो हन बेन मायन सा ही हन माई केड़ो कम कयो ची उजबे ते उजबे जी आ औरत मानू जा दिसो साईं उजबो आहे मणको उजबो आहे मणको उजबे जी आहे मुठ अमा मुठ ची आ उजबे जी आहे मुठ
0: जी
1: औरत आहे कमीणी मानू जो आ किरदार
0: वाह वाह वाह वा।
1: उने में सलीम साहब अखर आहे न तो उजबे ते उजबे जी आ औरत मानू जा दिसो इए ना अखर आहिन त वो इहा मणके ते मुठी आ हाणे इन कमीणी जा किरदार ॾिसो
0: वाह साईं वाह वाह साईं वाह वाह साईं वाह तमामु ज़बरदस्त सामान वक़्त जो हिसाब 3:45 मिंट थिया आहिनि वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो अव्हां खे केॾनि आहे वञिणो ॿुधंदा रहो जी सकरे नवाब शाह एफ एम 90.8 जे लाइव स्टूडियो मां ऐं असांजे अठनी चैनलनि तां ही जी एफ एम नेटवर्क जे तसलसल सां प्रोग्राम पेश कयो पियो।

0: असा चऊं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ असांजो अवां जो साथ रहंदो पूरे पंजे वगे ताणी। केॾनि लाइ वञिणो अचूं था नंढड़े शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो कहे जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
0: जमाली साहब, उस्ताद सुगर फकीर मोहम्मद कासिम डायरी साहब, उस्ताद सुगर फकीर हाजी नवाब संजरानी साहब, अलगोजे नवाब सुगर फकीर अब्दुल मजीद चांडियो साहब जन असा गड मौजूद आहिन। अजी समीन असो प्रोग्राम आ जारी सारी अस हाँ हल्दी पैंजे भलोर सुगड़ उस्ताद सुगड़ फकीर मोहम्मद कासिम डायरी साहब तरफ। साई अस्सलाम वालेकुम।
6: साई वालेकुम सलाम। सलीम साहब कड़ा हाल साई।
0: साई दुआओं अल्लाह जा एहसान अवा बुधायो की है। ठीक है
6: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: साई तमा के भलीकार चाहूं था GFM नेटवर्क ते प्रोग्राम लाइव हली रहयो है। तमा असा के खुदा जे दिने मा छा बुधाईंदा साईं।
6: साईं गुजारत पढ़ंदासूं छो त गुजारत जी सनफ हले पई।
0: वाह वाह बिस्मिल्लाह।
6: उस्ताद गुलबेग गुजारत चवे थी, जर जो नालो कई, जर जो नालो कई,

0: तोखे रांद जी हुई कान तडे त इल्म जी कई
1: जर जो नालो कई
0: जर जो नालो कई
1: हां
0: तोखे रांद जी हुई कान
1: हां
0: तडे त इल्म जी कई
1: वाड़े वा
0: जर जो नालो कई
1: जर जो नालो कई
0: जर जो नालो कई
1: हां
0: तोखे रांद जी हुई कान
1: हां
0: तडे त इल्म जो कई
1: तू इ तो चवी
0: जी वा
1: तू तो चवी त इयो इश्क पहुंजो पूरो न कई तडे त बस कई
2: यो जर जो फुल तार त कई
1: ही दिलो मट त कई वाड़े वा अन्या पढ़ पढ़
0: जर जो नालो कई तोखे रांद जी हुई कान
1: तू ये तो चवी ते ही वेढ़ो वैरान कई तोखे तो सुध समा हुई कान
0: बचो
1: तो कल हुई कान
0: बचे
3: खराब सजो ख्वाजा कई
2: ट्रहे तो सफा हुई कान
0: बचे
3: खराब सजो ख्वाजा कई
0: बचे जर जो नालो कई तोखे रांद जी हुई कान तडे त इल्म जी कई
1: भला इ तो चमे त दिल ही तमना पूरो कई
0: जी
1: सुध समात हुई तोखे कान
0: बचे
1: तोखे कल हुई कान
0: बचे
1: तोखे इश्क हो ही कोन
0: बचे
1: पढ़ पढ़
0: जर जो नालो कई तोखे रांद जी हुई कान
1: हाणे मुचो
3: मयो मिठो कई
1: मुझे समझ में हाणे जड़ो मरे पई
0: हां
1: तू ही तो चमे ते ही वकार पंजो खराब कई
0: बच
1: ही खानू खराब कई
0: बच
3: एतबार यकीन विनाई एतबार यकीन
2: रे तासत हुई
0: अरे भाई
1: हाणे वाह
3: वाह
0: मारी भाई वाह संजराणी
1: वाह बाबू वाह
0: हाजी नवाब
4: वाह साईं वाह वाह साईं इहो हाजी नवाब संजराणी साहब
0: जी जी जी जी
4: जी साईं हाणे सॼो कयो
0: साईं हाणे सुर आहे उमर मारवी गुलबेग
1: जी जी
0: जॾहिं उमर पा थिया मारवीअ खे भालूआ जे खूह तां खणी अची उमर कोट में कैद कयो
1: हेड़े हाणे
0: हाणे जंहिं महिल कोट में पहुती आहे त मारवी उमर सां ॻाल्हाए पई
1: वाह वाह
0: मारवीअ जो ॻाल्हाइण
1: वाह
0: चवेसि जर जो नालो कई तोखे रांद जी हुई कान तॾहिं त इल्म जी कई
1: वाह
0: साईं जर जो आहे वाह
1: जर जो आहे वाह
0: वाह
1: वाह
0: नालो आहे नौरंग
1: वाह
0: रांद जी आहे तास
1: जी
0: साईं पते जी तास थींदी आहे
1: जी
0: इल्म जी आहे मंज़िल
1: हल
0: हाणे चवे पई मारवी त वाह जो नओं रंग कई
1: वाह
0: वाह जो नओं रंग कई तोखे तास हुई कान रुगो मंज़िल कई
1: रुगो मंज़िल कई वाडारी वाह ताड़ी लगे से वाह वाह वाडारी वाह
4: वाह सही वाडारी
1: वाह
4: वाडारी वाह वाह मोहम्मद कासिम
1: भाई बेहतरीन बेहतरीन
4: अजे समय हाने हलंदासी सुगड़ फकीर उस्ताद हाजी नवाब संजराणी साहब तरफ साईं अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम सलाम साईं
4: साईं केड़ा रे नवाजा
5: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा साईं तवा खुश आयो खैर आ
4: साईं दुआ अल्लाह जा एहसान साईं अमा छा बुधाईंदा असके खुदा जे दिने मा
5: नड़ पई त थींदा
4: वाह वाह जबरदस्त
5: बैत याद की आन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाइरन खूह में उछलायो
0: वाह
5: हकीकत करे दा बुधायो इंशाल्लाह तवा के पसंद इंदी बुधण वारन के पसंद इंदी आयो साथ सौदागर जो काहे अज कतार खूह दिसी आऊं खुश थी आऊं लाथों पोतन तऊं पार चांगा छजाऊं चरण ले कढूं मयन मां महार लगी उन्य उदास थी कयूं पाणी जी पचार बाकन मुको बुशरा जो हो खास खिदमतदार पुरत हलो पाणी अंदे हली सोहे कार वठी सिकाई वाझ के अजब ॾिठई इसरार ॿार ॾिठाई मौके में आदम अहिड़े पार जहिड़ी सूहस जदी तहिड़ी सरस सिंगार जड़ी खुशबू खथूरी अजी तड़ी मंजुबकार जने मथे आंदा हूं जमाली के उधी तुरत तजले दार

0: वाह जी साहब वाह वाह साईं वाह वाह जी वाह वाह जी वाह अज लै किथे हाजी साहब पहुंचाए छो नड़ बैद सा जबरदस्त हाजी साहब सामिन हाने लंदासी असा जो सुगर फकीर गुलबेग जमाली साहब तरफ छो जो टाइम तमाम शॉर्ट है उनका पो न्यूज ब्रेक तरफ हलणो है कमर्शियल ब्रेक तरफ जी साईं गुलबेग साहब 2 मिंट तमाम जी साईं
1: मुंडरी संभरी हल्याऊं से नथा रात रहन मादर मुझे महबूब के हू वठो था बवन मच्छर कई मगरब पार जूं अज सलाहूं प्या सोचन इन जो रायो आहे रूम डे हूं के चीन डे था चढ़न के हल्की बिठा बुखाराम में के मके मज मरकन के ओरे लथा ईरान में के अगते व्या अदन बाकी जेकी जाई व्या जहाज में आऊ घोरी आया तन बिठी निहारिया बंदर ते मुझा मुसाफिर चल बोटन जली अथम दमन दस्तगीर जी मां पूजा वेठी पीरन से कदई दम कायम दीन चे मुख्यु अखड़ियू वरी ईदू कन मुखे वरी मुबारकू मिलना सजन दिसी सुरही

पाकिस्तान जे खिते में इस्तेहकाम लाइ कोशिशनि जी अहमियत वधी पई। अमरीका दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कोशिशनि में पाकिस्तान खे अहम ऐं मर्कज़ी हिसेदार करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ इतमाद जो हिसेदार आहे जेको खिते में कालदम दाइश ख़िरासां ख़िलाफ़ जंग में मर्कज़ी हैसियत रखे थो। अमरीका जे सेनेट कमेटी खे ब्रीफिंग ॾींदे सेनेट काम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौजी हिसेदारी सबबि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वॾी कामयाबी मिली आहे। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमरीका जी पुराणी दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जी सिधी रीत अकासी कनि थियूं। दहशतगर्दीअ वारनि सरगर्मियुनि ऐं इलाक़े सिक्योरिटी ख़तरनि सां अफ़गानिस्तान वाशिंगटन जे ध्यान जो मशहूरु आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक भेरो ॿीहर खबरदार कंदे चयो आहे ईरान जल्द खां जल्द जंगबंदी करे वठे त उन जे हक़ में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन वाइदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो जेको उन जे वेझे पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिबि विच ओवर जे ॿिनि आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ असली ऑप्शन ते गौर करे रहिया आहिनि जिन में ईरान जी फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वॾी बीमारी, नार फाट्स में वाक़े ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़, खारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज लाहे मलबे हेठां दबियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठण शामिल आहे। तवनाई जी सप्लाई बाबति रुकावटनि सूरतहाल बरकरार रही त मुआशी तरक़ी मुतासिर थींदी। वॾे पैमाने ते डिघे मुदे लाइ मुआशी ॾुखियाऊं पैदा थींदियूं। गॾियल क़ौमनि जे मुआशी ऐं समाजी काउंसिल जे इजलास दौरान पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद चयो आहे त हाणोकी आलमी तवनाई ऐं सप्लाई में ईंदड़ रुकावटनि जा असर दुनिया जे हर खिते ऐं मैशियत में महसूस कया पिया वञनि। बारनि जूं क़ीमतूं 2025 जी सरासरी भेट में भेण खां पीण खां वधी पियूं आहिनि। वधीक 3.20 करोड़ माण्हू गुरबत में वञण जो ख़तरो पैदा थी पियो आहे। ओलह एशिया जा मुल्क हिन बहरान में सिधी रीति शामिल न आहिनि पर असर बर्दाश्त करे रहिया आहिनि। तकरार सबबि सभ खां वधीक मुतासिर मुल्कनि में पाकिस्तान बि शामिल आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त इतमाद जोगी राब्तकारी मुआशी तरक़ी ऐं अवामी ख़िदमतनि खे हथी ॾियण लाइ अंतर आहे। डिजिटल राब्ता अॼु तालीम, सिहत, वापार ऐं अवामी ख़िदमतनि जी बुनियादी ज़रूरत बणजी चुका आहिनि। पर्यावरण इलाक़नि में डिजिटल पहुच माशी मौक़नि ऐं ॼाण ताईं पहुच जो अहम ज़रियो आहे। टेली कम्यूनिकेशन ऐं इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जे आलमी ॾिहाड़े ते सदर ज़रदारी आईटी वज़ारत ऐं पीटीए मोबाइल ऑपरेटर जी ख़िदमतनि जी वाखाण कंदे चयो त हुकूमत समूरे मुल्क में डिजिटल पहुच ऐं राब्तनि खे हथी ॾियण लाइ कोशिशूं वठी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त नेशनल एआई पॉलिसी 2025 हिकु इनकलाबी क़दम आहे जेका पाकिस्तान में एतिरादु ज़हन जे माहौलियाती निज़ाम जी तरक़ी जी ज़ामिन आहे। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ीअ सां तरक़ी करे रहियो आहे। 5G स्पेक्ट्रम जे कामयाब ऐं शफ़ाफ़ नीलाम डिजिटल पाकिस्तान तरफ़ अहम क़दम आहे। कोकीन

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: जीए एफएम
1: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अवांजे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: खोले मुसलमानन के हिकदम बुधाए दे
1: वाह
0: परहेजगारी जो खुदा हुक्म कयो कुरान में छेर बदी छो भला औरत न चाहे जे
1: वाह सही वाह वाह
0: खड में अड़ो खट्यो पे तंग पिंडी खाए जे कोशिश करे औलाद के इल्म पढ़ाए जे
1: बेशक बिल्कुल
0: कोशिश करे औलाद के इल्म पढ़ाए जे बाकी क्यारी कूड़े न तके नाचू बनाए जे फहम फजीलत सा वेही राग गाए जे बाकी खदड़न वांगुर ख्वार थी असियत दादन फकीर जी दिल सा लाए जे पराई औरत जे पुठा छो दा पांजी हड़ फुराए जे छो पांजी हड़
1: वाह वाह दहरी वाह वाह दहरी वाह वाह सही वाह
0: के आया के ईंदा के व्या के वींदा मागे ने मोटी तो सठ वरे वणाई सूरन में फबीर गो रोटी गदला भरी गप में का चिकन भरी चोटी मीम रख मन में का अल पसंदी ओटी तह दिल ताजल शाचे हिकड़न छोड़ी त बियन जोटी यार नियत छड खोटी रिड़ी तरसी रब पर से चे तो ही किस्सो ना है नऊ आहे मिड़ी के मालूम मत
2: वाह वाह डहरी वाह
0: ही किस्सो ना है नऊ आहे मिड़ी के मालूम मत की न वधंदी वने पी हर शे जी कीमत
1: बिल्कुल
0: सठ सैकड़ों सव में भी कई रुगो मान मिलावट
1: वाह
0: अज मशीनू अची हुई मुल्क में वधी हुई हरफत हारन वेचारन कम छडे ना जे के फिरयो कन फरहत
2: हाय हाय
0: मानन कया मथाओ घाड़ा पई आए उनन भी आदत पर मोह जा अच्छा कलब जा कारा मोर न थन मोहब्बत अज पुट न मने तो पी के कंदा निपायल नफरत
1: वाह वाह
0: पुट न मने तो पी के कंदा निपायल नफरत पर डाढो मानू को डोह करे तो ओडी मले इजाजत
2: हाय हाय तोबा
0: डाढो मानू को डोह करे तो ओडी मले इजाजत वाड़े वडे रावा तुझे करे कई मुझा सूबेदार भी सहूलत बाकी कोनी डोह गरीब जो जे पोहियो कन पोहियत पर मोर न सुजानन मर्ज के वही हन हकीमन मा हिकमत
1: वाह
0: मोर न सुजानन मर्ज के हन वही हकीमन मा हिकमत मरीज पहतो पैसा पूरा खासी कंदा खिदमत स्टोर बि उन्हनि जा पंहिंजा आहिनि जेके सुठी ॾियनि सिखत मेड़ी निपिया माल मिसकिन मां ॾिसो यार दोखे सां दौलत पर कोन्ही शौक़ु शागिर्दनि खे वई हाणे मास्तरनि मां महिनत तॾहिं त कापियूं हलनि पियूं कॉलेजनि में इहा हले पई हरकत तॾहिं त नौकिरियूं मिलनि पियूं नाणे ते रुगो आहे रिश्वत तॾहिं त नौकिरियूं मिलनि पियूं नाणे ते रुगो आहे रिश्वत पर कहर लॻो पियो आहे कश्मीर में जिते नाहे दाद न
1: दरिया
0: दाकारी आहे क्या
1: अलाह
0: शायदि दजाली दौर आहे परोर खे पारत हिते थींदी अदालत अॻिते सोलंगी जहिड़ो आहे दुनिया ते
2: वाह डारी वाह वाह
0: पर ए मुंहिंजा खुदा ए मुंहिंजा खुदा तूं बेपरवाही बारी
1: वाह
0: ए मुंहिंजा खुदा तूं बेपरवाही बारी किन खे सघ ॾिनी संदन में के लंगड़ा
1: लाचारी
0: किन खे ॻाढ़ी गणतियुनि में किन खे बदन में बहारी के मोगा कई मुल्क के मोगा कई मुल्क में किन खे होश घणो होशारी के खान सुमारी खटुन ते किन खे पट ते ॾिनी पाथारी
1: हाय हाय
0: किन खे खान सुमारी खटुन ते

0: என்னாயிட்டு
1: பிஸ்மில்லா.
0: சாயம் புகாரி தி கிரி சித்ரமுகை யாத்ரையத்தை
1: வா வா
0: பான பிரமாய் தோ ஜல் பர ஜல்யாந்தா வாபாரி தூ மைடி ஜல் புச்சுக்கா
1: பிந்துடி
0: தாத் கன் மைக்கும் யார் உக்காச்சா ஜெ மர்ஜி ஹை மடே மாரண தி தடி அக் வாலா தீர் புக்காச்சா
1: வா
0: கரணா ஹை உஸ்தாத் புகாரி தயர ஜல்தி கால் முக்காச்சா
1: வா வா வா வா
0: கால் தாடி பலி சுகடன் புதாய் ஹை دل کڈے پے سگڑ پائے جو کچھ سٹھو مجھے سامو اچن پے
2: استاد منٹال ہکڑی گال اواں جی ماں رکھتا تو ایو اسا کے استاد بخاری جو بیت بدا یہ تکڑا ائے تکڑا ونج ہک
0: جی جی بالکل بالکل
2: گال استاد بخاری دی ہلے پئی
0: بالکل بدائے بو مجھے ذہن میں اچے پیو چھتا ای ایف ایم ائے ائی سجی سندھ وارن دے لائے ہکڑو سگڑن جو میسج ائے
1: کہ
0: پانی بولی پنجے لوک ادب ऐं पंहिंजे सकाबत खे बरक़रार रखूं. अदब उस्तादनि जो कन तलब मां तालिब ज़ाहिद ज़माने में अखरांदा अरबाब तूं मंछार मोहबत जो बाबू पढ़ बाब थींदई सव सवाब अदब साण उस्ताद जी.
1: वाह साईं वाह.
0: उस्तादनि जी ॻाल्हि हली पई हुन जे करे मुंहिंजे साम्हूं बि उहा सिटाई अवां जे फरमाइश जे मुताबिक़ मूंखे यादि पियो अचे त साईं चयो त तकड़ा ई तकड़ा वेंदा आहिनि के दम दिलबर टिक थोरा दम के दम दिलबर टिक दम दम दे नाल दिलड़ी न भरीजे चार पर टिक चौपराचू चाह न भरीजे जुमा छंछर टिक जुमा छंछर छिक न लादी हफ़्ता महीना टिक हफ़्ता महीना हान भरीजे साल सरासर टिक लब सोना सिक न लादी जेतर जीवा तेतर टिक भला जे मर बि वञा उस्ताद बुकाई ताईं माइटर भला चए थो त जे मरी बि वञा तूं मैशर प्यार सभ में विरहाइण था हसद साड़ कीनू घटाइण था चाहियूं असीं सादा साधक संगत पंहिंजी सादी मोहबत जा मेला मचाइण था चाहियूं. ज़िंदगीअ जे लाहन चाढ़नि में मुआशरे खे ॾिसंदे बिखोड़ सारी दिलि कढे थी हिन ते बि लिखां हिन ते बि लिखां हिन ते बि लिखां पर वक़्त जे वोकरे खे ॾिसंदे मूंखे सली

0: बुझो छे कया धार धनी खारे खूह में खंड मिलाए तब हुंदस खार घणी आकल सा अहवाल उर्ज भली कहा महणी ये मन थार गाल गणी हमें साल का सोचो सच के हमें साल का सोचो
1: वाह साधु वाह
2: वाह साधु वाह
0: साथ से दिल कटे पई तकड़ी दौर दी सिट रही या ता सांजो कुड़ो सुगड़ पाई जो कुड़ो बुनियादी नुक्तो है वो जारता उन का पो दूर ताऊं कड़ी दौर दी सिट रहे मुझे सामू वहा दिल कटे पई दोस्तन जे सामू रखा ता सुगड़ा भला सुगड़ा है आई उन्हन के मारे सांतो उन्हन वटा थोड़ सारी भलियू गालियू मिलंदी
1: जी जी वास्ता दवा वास्ता दवा
0: दौर में अर्जा है ता देखो तो पे सजन सजो
1: जी जी
0: सो हक मत है ही है
1: वाह
2: वाह सही वाह
0: देना वठन का दर न कजाए तू वडो कजाए जी पो सोड़िए में सी कोन थिंदे कुंभार चाहे
1: वाह सही वाह
2: वाह
0: असांजे संदो जो डाहो सुगड़ उसामो जुमन कुंभार जेको असल हाला जे

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद अतीका।

0: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: को टी वी पे और रेडियो पे सुन के दिल में एक ऐसी जिबिलत सी उठती थी कि मे बी आई कैन डू इट एज वेल। तो वहां से स्टार्ट किया, आगाज में बहुत दुश्वारियां भी थी और उसके बाद मैं कंसिस्टेंट रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, माँ बाप की दुआएं थी, आप जैसे उस्ताद मिले, आप जैसे दोस्त भाई मिले जिनकी रहनुमाई थी और उस वजह से जो है मैंने अपना सफर जारी रखा। जाके मैंने 10 साल के एफर्ट के बाद 2017 में PSL 2 के फाइनल में मुझे कमेंट्री का मौका मिला FM 89 लहिया से, लहिया ही से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे मुझे जो है अपना जो है वो टीवी स्पोर्ट्स पे काम करने का चांस मिला। इसी तरह बतदरीज आस्ता आस्ता मैक टीवी पे काम किया, 2022 में 2023 में जियो सुपर पे डेब्यू हो गया। फिर आप जैसे उस्तादों के साथ मिलकर काम करने का बहुत मजा आया और ये सफर जो है इसको जारी रखे हुए हैं, मजीद एफर्ट्स भी कर रहे हैं। पेप बॉल तो प्रेडोमिनेंटली कवर करते हैं बहुत ज्यादा, पंजाब में भी और कराची में भी टेप बॉल के जितने मेन इवेंट्स होते हैं उनको कवर करने के लिए आते हैं, कमेंट्री करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो अपनी एफर्ट जो है वो क्रिकेट बॉल में कमेंट्री की उसको भी जारी रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ भी मैंने ओवर 40 ग्लोबल कप भी कवर किया 2023 में, फिर 2025 में वर्ल्ड कप ओवर 40 जो है वो भी जियो सुपर पे कवर किया। तो इस तरह जो है इट हैज बीन वेरी गुड, आई एम पैशनेट। पैशनेट होने के साथ साथ जो है वो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खुद को जो है मनवा सकूं इस फील्ड में और अपनी एफर्ट को जारी रखे हुए हूँ। आप जैसे सीनियर्स की दोस्तों की दुआएं साथ हैं तो इंशाल्लाह आई एम क्वाइट हैप्पी व्हाट आई हैव अचीव्ड और फ्यूचर में भी यही कोशिश है कि जितना कुछ हिस्से में आए उसको हासिल करें।
1: बिल्कुल, मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि तो मेरा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा ये स्टेटमेंट रहा है हमेशा कि FS हमारे एक साथी कमेंटेटर हैं जो डिजर्व करते हैं कि उन्हें PSL की अंग्रेजी कमेंट्री में भी होना चाहिए, उर्दू कमेंट्री में होना चाहिए। ही गॉट अ वंडरफुल एंड सूदिंग वॉइस, ही गॉट अ ग्रेट फ्लुएंसी और जबरदस्त अंदाज के कमेंटेटर हैं और सबसे जो इनका स्ट्रांग पॉइंट जो मेरी पर्सनल फीलिंग हैज अ ग्रेट नॉलेज ऑफ आउट एंड आउट क्रिकेट, जिनकी तमाम हिस्ट्री है जो हर दौर के ग्रेट्स रहे हैं। आप 2025 से लेकर 50s में 40s में चले जाइए, हर ईरा के ग्रेट्स के बारे में इनको नॉलेज है और ये जबरदस्त अंदाज में उन पे बात कर सकते हैं और बड़े जबरदस्त अंदाज में जो है वो बात करते हैं। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है GFM रेडियो नेटवर्क, इस पे हम हमेशा खुलकर बात करते हैं। तो FS आपने जब कॉमेंट्री जाहिर है सुनना शुरू की, देखना शुरू की, बड़े बड़े ग्रेट्स को आपने सुना, टॉनी ग्रेग, रवि शास्त्री, एन चैपल, नासिर हुसैन से लेकर एवरीवन और पाकिस्तान कमेंटेटर्स की बात फिर से लेकर चिश्ती मुजाहिद, क्या फर्क देखते हैं उस दौर की कमेंट्री में जब हम लोग ग्रो अप हो रहे थे, हम लोग ने कमेंट्री शुरू किया सुननी शुरू और इस वक्त की जो कमेंट्री और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं मैं देखता हूँ उनकी वोकैबुलरी में भी वो बात नहीं है, उनके अल्फाज का चुनाव भी उस तरह का नहीं है और उनके अंदाज भी उस तरह के नहीं है कि एक अंदाज से मुतासिर कर सकेंगे। जैसे अदरीस भाई जो थे वो अपने अंदाज की वजह से छाए रहे, ठीक है, इकबाल बेग का अपना एक स्टेट्स का एक जरिया था, हसन साहब की आवाज और फ्लुएंसी, चिश्ती साहब का अपना स्टाइल था जिसमें एट टाइम्स मजा भी होता था और बड़ी सिंपल और शानदार अंग्रेजी में बोलते थे अफ़्तार साहब, कुरैशी साहब। तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप अब मैं आपको जहां तक जानता हूं आप मिडिल एज के बन गए हैं हमारे हिसाब से कि आपने अनों को भी सुना है, नयों के साथ भी काम कर रहे हैं और आप दरमियानी जनरेशन जो कमेंट्री में उसमें है, तो क्या फर्क पाते हैं उस जनरेशन में हमारी जनरेशन?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने रमेश पाल साहब और मैं ये समझता हूँ कि जो पहले दौर के कमेंटेटर्स इन ग्रेट्स का आपने जिक्र किया है, चाहे वो इंटरनेशनल अरीना से हों या पाकिस्तान से, स्पेशली पाकिस्तान के कमेंटेटर्स जिनमें हसन जलील साहब, इदरीस साहब उर्दू में और उनके साथ साथ इंग्लिश की बात करें तो इफ्तिखार अहमद साहब, मुजाहिद साहब, ये जो ग्रेट्स थे, इवन तारिक रहीम साहब, तो राजा असद अली खान साहब, ये पढ़े लिखे लोग थे, ये क्वालिफाइड थे। आप देखें कोई कैम्ब्रिज से क्वालिफाइड है, कोई ऑक्सफोर्ड से, तो कोई एचिसन कॉलेज का पढ़ा हुआ है, तो इनकी तालीम थी, ये ग्रेट थे और ये जो है टिपिकल ब्रॉडकास्टर्स थे और इनकी वॉइस क्वालिटी जो थी वो ब्रॉडकास्टिंग की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच करती थी, उन पर पूरी उतरती थी। और ये चीज आजकल की जो जनरेशन है उसमें देखने को कम इसलिए मिल रही है कि आजकल के जो नए कमेंटेटर्स हैं तालीमी लिहाज से भी क्वालिटी इनकी कम है,

0: और इनके पास कम है बनिस्बत उन ग्रेट्स के, वो एक ऑरा था, एक लेगेसी थी, चाहिए तो ये था कि उसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे अलमिया ये है कि जिसको भी दो चार बातें करना आती है वो समझता है कि मैं कमेंटेटर हूँ, हालांकि ये एक बहुत डिफिकल्ट आर्ट है, सिर्फ बोलना या बात, योर वॉइस क्वालिटी मैटर्स अलॉट, और लिसनर्स को आपने एक ऐसी चीज देनी होती है, ऐसी वोकैबुलरी यूज करनी होती है जिससे लिसनर आपको सुनने के बाद रेडियो या टीवी से हटने की जिसारत ना करे। ये चीज हमने उन ग्रेट्स जिनके हमने नाम लिए हैं थी, बट अनफॉर्चुनेटली नई जो जनरेशन है, नया जो स्लॉट है, इसमें ये चीज देखने को कम नजर आती है। तो इस पे भी अगर काम करें, बाकायदा से खुद को ट्रेन करके आए, बुक्स रीड करें, रेडियो पे ग्रेड्स को सुने, उसी लेगेसी को अगर कंटिन्यू करना है तो इवन इंटरनेशनली इंडिया के भी ग्रेट कमेंटेटर हुए हैं, संजय बैनर्जी की बात कर ले, विनीत की बात कर ले, सुरेश रैया, बहुत अच्छे अच्छे आवाजें, बड़े अच्छे अच्छे नॉलेजेबल कमेंटेटर्स रेडियो पे हुए, और खासतौर पर जब आप रेडियो को सुनकर आते हैं तो आपके पास ऐसा नॉलेज होता है, ऐसी फ्लुएंसी होती है जो यकीनन सुनने वालों के लिए एक ऐसा मंजर पेश करती है जो कि देख तो नहीं रहे होते लेकिन खुद को ग्राउंड में फील करते हैं। ये खूबसूरती है रेडियो की, और इवन टीवी पे भी अगर आप देखें कि किस तरह के ग्रेट कमेंटेटर्स हुए हैं, टोनी ग्रेग की बात आप कर रहे थे, इयन चैपल ग्रेट, वो रेडियो भी करते हैं, टीवी भी करते हैं, तो टीवी पे इन ग्रेट्स की जब आप आवाज सुनते हैं, मार्क निकोलस हो और फिल लॉरी हूँ, रवि शास्त्री हूँ, संजय मंजरेकर हूँ, जब आप इन लोगों को सुनते हैं तो यकीनन आपको फील होता है कि क्रिकेट गेम जो है इट्स नॉट ओनली अ गेम, ये सिर्फ गेंद और बैट का खेल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वसत है, डेप्थ है, और इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी है, और वो अट्रैक्शन अल्फाज से आती है, और जब इस खेल को अल्फाज में बयान करके डिफरेंट सिचुएशंस को अपने खास अंदाज में ये ग्रेट्स जब बयान करते हैं तो यकीनन वो शायकीने क्रिकेट के लिए एक क्राउड पुलिंग जिसको आप कह सकते हैं कि सिचुएशन बन जाती है। और एक वक्त तो ये था नाना साहब कि जो कमेंटेटर्स थे, जिस तरह चिश्ती मुजाहिद साहब और इफ्तिखार अहमद का दौर था, वो कमेंटेटर्स एक ऐसा वक्त था कि प्लेयर्स से भी ज्यादा मकबूल हो गए, तो अनफॉर्चुनेटली आजकल वो चीज बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन होप्स हो, हर दौर को खत्म होना होता है तो हर दौर का एंड भी होना होता है, तो वी आर होपिंग अगेंस्ट होप कि पॉजिटिव नोट पे जो लोग कर रहे हैं वो भी खुद को बेहतर करेंगे, अपनी इन चीजों पे काम करेंगे, अपनी बेसिक्स जो हैं उनको बेहतर करेंगे, और वॉइस क्वालिटी जो है उस पे भी आई होप के प्रोड्यूसर हजरात या प्रोडक्शन वाले जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और डिजर्विंग वॉइसेस जो हैं उनको, और कमेंट्री का जो स्टैंडर्ड अगर उन ग्रेड्स के एरा को मैच ना भी कर सका तो कम से कम बेहतरी की तरफ जरूर आएंगे।
1: जी हाँ, बड़े अच्छे अंदाज में आपने बात की, बिल्कुल कमेंट्री का स्टैंडर्ड जो है बढ़ना ही चाहिए। 5:30 पे हम ब्रेक की जाने पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रखेंगे, अभी 2-3 मिनट मेरे पास हैं कि मैं एफएस से कुछ जो और की शख्सियत से मैं वाकफ हूँ वो चीजें ले सकूं। अभी तो हम बात करेंगे ग्रेट टोनी कोजियर का भी हम जिक्र करेंगे, जॉन आर्नॉल्ड का भी, ब्रायन जॉनसन का भी, हेनरी ब्लूफील्ड, जोनाथन एग्न्यू, और साथ साथ क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस। और पैसों की बात आपने की थी, मुझे याद है मुझे एक दफा चिश्ती साहब ने बताया था कि 65 में जब उन्होंने अपना पहला मैच किया 66 में, जो कि एक 3 डेज मैच था, उसमें उनका जो पर डे था वो गालबन 65 रुपीज था, और हैदराबाद के लिए कराची से उन्हें ट्रेन का टिकट दिया था रेड पाकिस्तान ने, और उस वक्त जो प्लेयर्स की शायद पर डे की फीस थी वो 30 रुपए थी, यानी कमेंटेटर की फीस उससे डबल थी, और मकबूलियत का भी आपने जिक्र किया। हमारे पास अभी 2 मिनट हैं ब्रेक पे जाने से पहले, मैं चाहता हूं कि एफएस जो है वो जो ग्रेट माइकल होल्डिंग है वेस्ट इंडीज के, उनका इंप्रेशन बहुत अच्छा देते हैं, और हमारे जो लिसनर्स कमेंट्री को जानते हैं समझते हैं वो माइकल होल्डिंग की क्रिकेट से भी वाकफ हैं, जिन्हें विस्परिंग डेथ कहा जाता था, सडन डेथ भी उन्हें कहा जाता था, और उनकी कमेंट्री जो कमेंट्री को एक नए आयाम उन्होंने दिए, और स्काई स्पोर्ट्स ने 98 से लेकर 2020-21 तक 23 साल मुसलसल उनसे कमेंट्री करवाई। तो एफएस, हमारे लिसनर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े से कुछ चंद जुमले जो हैं वो माइकल होल्डिंग के इम्प्रेशन में हो।
0: वेल राणा, यू आर इन अ वे पुटिंग मी in Kandahar, Kota, because I've retired from the international commentary, as people knew. But yeah, nowadays I'm covering football here in Pakistan, and what I'm sensing, the people like to move in, they shift this, and the boundary is the batsman. And on the other hand, the bowlers have different varieties, but at the moment, the game has become battles game, and I don't like it the most. Lots of people in the past used to say that Shoaib Akhtar, one of the lethal bowlers and one of the greats, though he has pace, but at times the accuracy lacks. So he can be one of the greatest ones, but and not as much as I can assume. People might think, but me, good, not that great.
1: Wonderful, wonderful. हम तालियां बजा रहे हैं फैज मलिक के लिए, जिन्होंने इंतहाई शानदार अंदाज में और माइकल होल्डिंग की कमेंट्री की झलक जो है बिल्कुल कानों को बहुत भरी लगती है और वो सुनाई भी दी। इस वक्त प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में जीए एफएम रेडियो नेटवर्क पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है के, तो एफ एस से मजीद बात करेंगे कमेंट्री के हवाले से भी, एंड ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच एज वेल। लेट्स टेक ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ऑन जीए एफएम रेडियो नेटवर्क।
2: आप सुन रहे थे जीए
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन आफ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
7: अम्मा, हेडिसम का छा मिलियो?
8: छा मिलियो पुत्र?

0: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी दस्तनि खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
3: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे।
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं जिन्हें मौके मिलते हैं, वरना यकीनन बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मौके नहीं मिल सकते। बहरहाल रेडियो कमेंट्री का एक अपना हुस्न है, जिस तरह हमारे दोनों सुनने वालों ने बताया। बहरहाल अब एक ये जो टेस्ट मैच जारी है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उसके हवाले से बात करते हैं, जहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें मध्य मुकाबले हैं। पहला टेस्ट मैच हार चुकी है पाकिस्तान की टीम, और बांग्लादेश की टीम ने जो है वो इस मैच में पहले बैटिंग की थी, 278 रन अपने लॉटेड ओवर में स्कोर किए, जिसमें महमूदुल हसन जॉय ने कोई रन नहीं बनाया, 26 रन तनवीर हसन ने बनाए, मोमिनुल हसन ने 22 और नजमुल हसन ने 29 रन स्कोर किए, और शिकुर रहमान ने तेईस और लिट ने 126 4 रन बनाए, मेहदी मेराज ने और ताजुल इस्लाम ने 16 रन स्कोर किए, 7 तस्कीन अहमद ने और 12 रन शरीफुल ने किए। ये अलग बात है कि सातवें विकेट पे बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप हो गई और 6 विकेट जो 116 पे गिर गई थी, उसके बाद सातवें विकेट 176 पे गिरी और आठवीं 214 पे जो है वो गिरी, और दसवीं विकेट जो है स्कोर को 278 तक ले गई, नवीं और दसवीं विकेट एक साथ ही 278 पे गिर गई। बॉलर में पाकिस्तान के लिए अब्बास ने 3 आउट किए, 4 आउट किए फरम शहजाद ने, 2 खिलाड़ी आउट किए हसन अली ने, पहली ताल्लुक है। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में सिवाय बाबर आजम के कोई बैटर खास कर नहीं दिखा सका, बाबर आजम ने 68 बनाए, 38 रन नीचे साजिद खान ने स्कोर किया और 13 एकर बनाए। पाकिस्तान ने इस तरह 46 रन की लीड कंसीड कर दी, तीन खिलाड़ी नहीं बनाना और साजिद इस्लाम ने आउट किए, दो खिलाड़ी मेहदी मिराज और तस्कीन अहमद ने आउट किए, जबकि दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश के लिए 52 रन बनाए हैं महमूदुल हसन जॉय ने, 4 पे आउट हुए, जबकि मोमिनुल हक ने 30 रन बनाए और नजमुल हसन शांतो जो है वो 13 रन पर नॉट आउट है, 110 पे 3 खिलाड़ी आउट है। तरफ मजमूनी बरतरी उनकी 156 की हो गई है और इस टेस्ट मैच में भी उनकी पोजिशन मजबूत नजर आ गई। वकास, इस टेस्ट मैच को किस तरह से देखते हैं और पाकिस्तान की जो ओवरऑल कारकर्दगी रही है इस पूरी सीरीज में, पहला टेस्ट मैच हार गए उसको किस तरह से देखते हैं?
1: हमने देखा है पाकिस्तान के से पहले भी जो सीरीज हुई है उसमें भी अब भी ये विकेट हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो दबाव इन्होंने बनाया होता है उसको बरकरार नहीं रख पाती। से पहले भी बांग्लादेश के साथ जो सीरीज हुई थी यही हमने देखा था, स्टार्ट की 6 विकेट वो बहुत जल्दी हासिल कर ली थी, और इस टेस्ट मैच में भी हमने यही देखा कि पहली इनिंग में 6 विकेट काफी जल्दी हासिल कर ली थी, तकरीबन 120 पे 6 उठते बांग्लादेश के लिए। उसके बाद रतन दास ने जिस तरह परफॉर्म किया, उन्होंने सेंचुरी बनाई और 278 तक बांग्लादेश गई, तो पाकिस्तान जो प्रेशर बनाता है उसको मजीद बिल्ड नहीं कर सकता। यही वो वजह है कि पाकिस्तान फिर से टेस्ट की तरफ जाता है और फिर बैटिंग में भी कोलैप्स करता है। 232 पाकिस्तान ने बनाए पहली इनिंग्स में, बाबर बॉर्डर नजर आए, साजिद की जो इनिंग्स थी उन्होंने कहीं ना कहीं हमें मैच में एक दफा फिर लेकर आई है, उन्होंने जो 38 रन बनाए हैं वो टीम के लिए जरूरत थी उस मौके पर, और तेज बैटिंग भी उन्होंने की थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश की बैटिंग की बात करें, उनकी सिर्फ 3 खिलाड़ी इस टाइम आउट है, 110 रन उन्होंने बनाए हैं और 156 रन की लीड है। तो अगर कल अर्ली पाकिस्तान

0: हासिल करता है, कहीं ना कहीं 250 तक अगर पाकिस्तान को टारगेट मिलता है तो फिर 6 का टारगेट। लेकिन अगर ये 260 से ऊपर जाता है, 250 से ऊपर जाता है तो फिर बांग्लादेश के विकेटों पर आखिरी इनिंग में रन करना काफी मुश्किल होते हैं। स्पिनर्स के लिए बहुत साजगार हो जाती है और उनके पास बहुत ही शानदार स्पिनर है, ताजुल इस्लाम उनके पास है, मेहदी हसन मेराज है, और पाकिस्तान के पास लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी काफी ज्यादा है जो मेहदी हसन मेराज उनको परेशान कर सकते हैं। और अगर राइट हैंडर की बात करें तो फिर बाबर है, बाबर के अलावा सलमान आगा है, रिजवान है, लेकिन ताजुल इस्लाम उनके साथ लेफ्ट आर्म गेंदबाज उनके पास है जो वो परेशान है राइट हैंडर्स को। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर एज दूंगा तो थोड़ा सा बांग्लादेश को, उनकी अपनी होम ग्राउंड पर, उनके होम विकेटों पर इस टाइम वो थोड़ी फेवरेट है इस मुकाबले में।
1: एफएस बांग्लादेश यकीनन फेवरेट है, और लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन जरा करना चाहूंगा डीप कि क्या हालत हो गई हमारी टेस्ट क्रिकेट की। हमसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका या शारजा में खेलते हो बड़ी बड़ी टीमें घबराती थी, लेकिन अब हम बांग्लादेश में भी हार रहे हैं, श्रीलंका में भी एक तरह से हार रहे हैं, यूएई में भी कारकर्दगी कुछ खास नहीं है, तो व्हाट हैज हैपेंड विद पाकिस्तान टीम?
2: तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका रमेश पाक, और इस पे मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 2 या 3 साल कि अगर आप पाकिस्तान की कारकर्दगी देख लें तो वो बिल्कुल मुतासर को नहीं रही। उसकी वजह ये हो सकती है कि लैक ऑफ टेस्ट और फ्रेंचाइज क्रिकेट में प्लेयर्स की ज्यादा दिलचस्पी लेना और गेम अवेयरनेस का कम होना और कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। पिछले 2-3 सालों से आप देखें कि कितने प्लेयर्स ने टेस्ट डेब्यू किए हैं। देर वॉज अ टाइम वेन टेस्ट कैप्स ऑलमोस्ट वर फॉर सेल, टेस्ट कैप एक वक्त होता था कि खिलाड़ियों का ख्वाब हुआ करता था, लेकिन आजकल टेस्ट कैप जो है वो इतनी मुश्किल नहीं, और टेस्ट कैप ही मिलती है उसके बाद पहली सीरीज के बाद प्लेयर्स गायब होते हैं और फिर साल साल जो है वो गेम से आउट हो जाते हैं। सो दिस हैज बीन द प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये है कि मोमेंटम जो है वो नहीं बन पा रहा है, उसकी वजह यह है कि प्लेयर्स का जो माइंड सेट है, प्लेयराना क्रिकेट जो खेला करते थे इंजमामुल हक, मिस बाउल हक, उनके दौर में टेस्ट क्रिकेट जो हुआ करती थी, पाकिस्तान के ग्रेट्स यूनुस खान जिस तरह, या मोहम्मद यूसुफ की आप बैटिंग के हवाले से बात कर लें, तो उस एरा में जो दलेराना क्रिकेट पाकिस्तान खेला करता था इवन अगेंस्ट बेस्ट साइड्स, और आजकल आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश और इवन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी उस किस्म की कारकर्दगी जो है वो दिखाने से कासिर हैं। उसकी वजह यही है कि दलेराना क्रिकेट जो है उसका फुकदान देखने को मिल रहा है और वो श्योर ही नहीं होते अपनी प्लेस पे। दे आर नॉट इवन श्योर कि हम ये सीरीज खेल रहे हैं तो नेक्स्ट हम होंगे भी या नहीं, तो दे आर इनसिक्योर, दे आर इनश्योर, दिस हैज बीन द प्रॉब्लम। और दूसरी बात यह है कि आप देखें हमारी पीसीबी पता नहीं क्या कर रही है, वनडे T20 में शामिल कर देते हैं और टेस्ट क्रिकेट तो दूर दूर नजर ही नहीं आती। 14 से 15 टेस्ट मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेल रही है साल के, और उसके मुकाबले में आपके टेस्ट मैचेस डबल फिगर में भी नहीं है। तो जब आप इतनी कम क्रिकेट खेलेंगे तो आपको मोमेंटम कहाँ से बिल्ड होगा, आपके पास ग्रेट्स कहाँ से डिवेलप होंगे, और आपकी टीम रिदम में कब आएगी? दिस इज अ वेरी मच थिंकिंग पॉइंट, और पीसीबी एंड हूएवर आर रिस्पॉन्सिबल नीड टू पुट द थिंकिंग कैप ऑन।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं टेस्ट मैच की जो अफादियत है, टेस्ट मैच की जो दिलचस्पी है, वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है। उस तरह के टेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं हो रहे जो 100 टेस्ट मैच खेलें, जो 500 खिलाड़ी आउट करें, 400 खिलाड़ी आउट करें। मुझे देखें अब याद नहीं आता कि वसीम अकरम की 416 टेस्ट विकेट्स हैं, बकाल अकाजन उसकी 373 हैं, इमरान खान की 362 हैं। उसके बाद मुझे कोई हमारा बॉलर नजर नहीं आ रहा जिसने 300 टेस्ट विकेट्स भी ली हों। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज है जो कि मैं समझता हूँ हमारी टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल टाई डाउन कर रही है। बहरहाल प्रोग्राम में एक और ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से जब लौटेंगे तो हमारे दोनों साथियों से मजीद गुफ्तगु करेंगे और फिर 6 बजे के आसपास हम 6 बजे की न्यूज के साथ ही आपसे इजाजत ले लेंगे। और मैं अभी से माजरत पाऊं कि प्रोग्राम को हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, आज लंबा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि हमें ऑन एयर आना पड़ेगा फॉर दी सेमीफाइनल एंड फाइनल ऑफ दी पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप। और अगला जो हमारा कमर्शियल ब्रेक के बाद सिलसिला होगा 10 मिनट का, उसमें हम इसी टेबल चैंपियनशिप और टेबल क्रिकेटर्स और हमारे दोनों मेहमानों से बात करेंगे। लेट्स टेक अनदर ब्रेक, स्टे ट्यून्ड GAFM रेडियो नेटवर्क।
3: मोरो नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: सामीन व नाजरीन, मैं

बॉल जो है वो आने वाले वक्त में चली जाएगी, और क्रिकेट बॉल को जिस किस्म का स्पॉन्सरशिप और जितनी फैंस फॉलोइंग मिली हुई है, उसकी वजह सबसे ज्यादा तो ये है कि ये शॉर्ट स्पैन ऑफ गेम है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में खत्म होने वाली गेम है और इंटरटेनिंग स्टफ है, और हमारी खासतौर पर जो हमें ये दीवानी है क्रिकेट की, और इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, और टेप बॉल से बढ़ के एंटरटेनमेंट हो नहीं सकती क्योंकि शॉर्ट है, वक्त की इसमें ज्यादा ज्यादा नहीं है, और आपके पास टाइम होता है खुद को।

0: मैचेस देखने के लिए आप लेके आते हैं ग्राउंड्स में, और इवन आप आजकल टेलीवाइज हो रही है तो टीवी पे भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया की वसातत से भी मैचेस देख रहे हैं। और क्यों नहीं, जब आप टीवी पे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो क्यों नहीं आप सुन भी सकते हैं। और यकीनन जिस तरह की ये नाम है, आप बात करें आईकॉन क्रिकेटर्स की टेप बॉल में, जिस तरह FMC है, KC है, TM है, जहीर कालिया है, मुजम्मल कामो की, छोटा विकी, सरमद हमीद, उमर बाजवा, जैनी लेफ्टी, सरदार हसनैन, इनाम लेफ्टी, इरशाद और कादर कश्मीरी, जिस किस्म के ये खिलाड़ी हैं और जितना इनका ओरा है, हसन पेंडा की आप बात कर लीजिए, इनकी खुद की इतनी फैन फॉलोइंग है यकीनन, क्योंकि आपके जो लिसनर्स हैं खासतौर पे जो ट्रेवलर्स हैं जो सफर कर रहे होते हैं या जहाँ पे टीवी की या सोशल मीडिया की ज्यादा एक्सेस नहीं है वहाँ पे आपको लिसनर्स मिलेंगे। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि टेप बॉल के खिलाड़ियों के फैंस पाकिस्तान के हर कोने में आपको मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे। तो यकीनन अगर ये स्टेप लिया जाए इन फ्यूचर, सो दैट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल।
1: बिल्कुल मैं समझता हूँ, और बावजूद इसके कि मैं ये भी ऐड करूंगा कि सोशल मीडिया या ये चैनल अवेलेबल होने के बावजूद भी एट टाइम जो रेडियो कमेंट्री का चार्म है वो अट्रैक्ट करता है, यही वजह है कि आज भी जब भी रेडियो से कमेंट्री नशर होती है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी रेडियो से हो और BBC की कमेंट्री आज तक लोग सुनते हैं, इवन इंटरनेट के जरिए एप्स के जरिए BBC को ट्यून इन करके और ABC को ट्यून इन करके और रेडियो न्यूजीलैंड को ट्यून इन करके ये सुना जाता है। मोहम्मद वकास, अच्छा आज के मैचेस हवाले से क्या कहेंगे, कौन सी दो टीम जो है वो फाइनल में क्वालिफाई कर सकती है और कौन सी टीम जो है वो चैंपियन बन सकती है इस पाकिस्तान ट्रेबॉल चैंपियनशिप की?
2: तमाम टीम्स अच्छी है, तमाम टीम्स परफॉर्मेंस लाजवाब भी है, लेकिन यहाँ पर न्यू स्पोर्ट्स अगर हम बात करें, अफरम चकवाल उनके साथ है, शाहजहान उनके साथ है, हैदराबाद का बहुत बड़ा नाम साथ उनको कहा जाता है, तो मैं थोड़ा सा उनको एज दूंगा, वो फाइनल में जा सकती है और उनके साथ साथ शेरवानी स्पोर्ट फाइनल में जा सकती है क्योंकि इरशाद अफीदी उनके साथ जैसे बॉलर है, उनके अलावा मौसम ब्रेकर है, बैटिंग की अगर बात करें सरमद हमीद उनके साथ खेली रहती है, तो ये दो टीमें हैं जो फाइनल में जा सकती है। और लेकिन मुकाबले अच्छे देखने को मिलेंगे और टेबाल, जैसे आपने बात की टेबाल बहुत ज्यादा उरूज पर है, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या इंडिया हो, जहां पर भी हो टेबाल क्रिकेट खेली जाती है। नेपाल चैंपियनशिप ने जिस तरह नौजवानों को यहाँ पर मौका दिया है और इसके बाद इन्होंने ये ऐलान भी यहाँ पर कर दिया है कि 20 सितंबर तक कश्मीर में भी पाकिस्तान नेपाल चैंपियनशिप का अगला इवेंट जाएगा और उसके बाद शायद अगला इवेंट ये भी में खेला जाए और उसके बाद फिर इंटरनेशनल इवेंट भी अगर आ सकते हैं, इन्होंने हमें लाइक की होगी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टेबल क्रिकेट मजीद उर्ज पर जाने वाली है और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि ओलंपिक में भी टेबल क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं दे रहा हूँ, अब ओलंपिक में भी टेबल क्रिकेट को ऐड किया जाएगा क्योंकि स्मार्ट क्रिकेट है और ओलंपिक में इन चीज़ों को ऐड किया जाता है जिसके रिजल्ट फौरन लेते हैं, तो एक घंटे दो घंटों में इनका रिजल्ट निकल आएगा और इंशाल्लाह तो टेबल क्रिकेट मजीद आगे की तरफ जा रही
1: है। इस बात में कोई शुबा नहीं और ये वाकई ब्रेकिंग और बड़ी न्यूज़ है कि टेबल उसे ओलंपिक में भी शामिल किया जाए और इंशाल्लाह इंटरनेशनल इवेंट भी हो। अच्छा फर्क शेर, अगर मैं क्योंकि आपका ताल्लुक कमेंट्री से और वकास का ताल्लुक भी कमेंट्री से, तो कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो आप दो इंटरनेशनल और दो नेशनल, यानी दो पाकिस्तान के दो इंटरनेशनल, आपके ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर्स बताइए पहले, देन मैं कॉमेंटेटर्स पे आऊँ।
0: ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर्स की बात करें तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन ब्रायन चार्ल्स लारा हैं और ऑल टाइम फेवरेट बॉलर जो है वो वसीम अकरम। वसीम अकरम के अलावा इंटरनेशनली अगर मैं लाइक करता हूँ तो वो मेलकम मार्शल, ग्रेट वेस्ट इंडियन बॉलर, और पाकिस्तान में या पाकिस्तान में अगर बॉलर की बात की जाए तो मोहम्मद आसिफ एक ऐसे बॉलर थे जो कि बहुत ही ग्रेट हो सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली हिज करियर डिडंट प्रोलॉन्ग एज इट शुड हैव।
1: जी हाँ यकीनन मोहम्मद आसिफ बहुत सारे मैचेस अभी खेल सकते थे मगर किसी ना किसी तरह उनका करियर जो है वो ट्रंकेटेड रहा सॉर्ट ऑफ, और उस ट्रंकेशन की वजह से मैं समझता हूँ कि वो कंटिन्यू ना कर सके, बट हाउएवर उन्होंने जितना भी परफॉर्म किया अच्छा परफॉर्म किया। वकास, आपके ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर्स दो पाकिस्तान से और दो वर्ल्ड दुनिया भर से, किन चार क्रिकेटर्स का आप नाम लेना चाहेंगे?
2: बैट्समैनों की अगर बात करें साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स और इंडिया के विराट कोहली ये मेरे बाहर से और पाकिस्तान से मेरे बाबर आजम इसको किंग भी कहा जाता है
3: बिल्कुल,
2: और उनके अलावा मोहम्मद आसिफ।
1: मोहम्मद आसिफ आप दोनों मुत्तफिक हैं इस बात की मुझे खुशी है। और एफएस ऑल टाइम फेवरेट कमेंटेटर्स दो पाकिस्तान से और दो इंटरनेशनल।
0: ऑल टाइम फेवरेट कमेंटेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम पाकिस्तान उर्दू में हसन जलील साहब और इंग्लिश में चिश्ती मुजाहिद। और ऑल ओवर द ग्लोब अगर आप बात करें तो टोनी ग्रेग एंड मार्क निकोलस।
1: दोनों ही आपने इंटरनेशनल इंग्लैंड से पिक किए हैं। मार्क निकोलस जो के हैं हैम्पशायर के लिए खेले भी मगर टॉप लेवल पे नहीं खेले, और टोनी ग्रेग ने तो इंग्लैंड की कैप्टनसी भी की, और टोनी ग्रेग ने ही कहा था कि वी विल मेक देम ग्रोवल। वेस्ट इंडीज ने जब उनका टूर, हर कोई आगे टोनी ग्रेग को आउट करके कहता था कम ऑन मेक अस ग्रोवल। उस जमाने में ग्रोवल कमेंट्री में यूज नहीं किया जाता था, आजकल तो कर सकते हैं, आजकल तो और भी बहुत कुछ यूज हो रहा है। बहरहाल वकास आपके फेवरेट्स कौन है और दुनिया भर से जो कमेंटेटर्स दो और दो पाकिस्तान?
2: पाकिस्तान से तारिक सईद है और इंग्लिश में रमीज राजा। इंटरनेशनल बात करें तो इंडिया के रवि शास्त्री और टोनी ग्रेग।
1: रवि शास्त्री भी माशाल्लाह इस वक्त एक तरह से बहुत बड़ा टॉल वर्ड है, और खासतौर पर जो टॉस को करते हैं, जिस तरह से टॉस को कंडक्ट करते हैं शायद ही कोई कर पाए। बस मैं अपने लिसनर्स को आखिर में कह देता हूं कि मैंने रेडियो पे हमेशा क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस को बहुत पसंद किया है और ब्रायन जॉनस्टन को, और अगर आपको कभी यूट्यूब पे मौका मिले तो ब्रायन जॉनस्टन का लेग ओवर निकाल के जरूर सुने, आपको पता चल जाएगा कि ब्रायन जॉनस्टन क्या चीज थे। और क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस ने 83 में जब इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया तो कहा था कि दिस इज द बिगेस्ट अपसेट ऑफ दी स्पोर्टिंग हिस्ट्री दैट इंडिया हैव मेड टू वेस्ट इंडीज, यानी क्रिकेट की नहीं बिगेस्ट अपसेट ऑफ द स्पोर्टिंग हिस्ट्री, यानी उस वक्त इतनी कमजोर थी इंडिया या इतनी ताकतवर थी वेस्ट इंडीज कि क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस को कहना पड़ा कि दैट इज द बिगेस्ट अपसेट ऑफ द स्पोर्टिंग हिस्ट्री। तो और फिर पाकिस्तान से ऑफकोर्स चिश्ती साहब और हसन जलील साहब को मैंने बहुत पसंद किया है, ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट कॉमेंटेटर। आज का शो मुकम्मल तौर पर नजर रहा कॉमेंट्री के, और हमारे दोनों साथियों को मैं बहुत मशहूर हूँ, एफ एस मलिक साहब फ्रॉम लैया और मोहम्मद वकास साहब फ्रॉम नशोरो फरोज, जिन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमारे शो में शिरकत की। जी एफएम रेडियो नेटवर्क के तमाम लिसनर्स से राना शफाक इजाजत चाहेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, अल्लाह निगेबा।

सिंध जे 8 जिलनि में मकानी इदारनि जी नंढी चूंड लाइ पोलिंग जो अमल मुकमल थियण बाद गैर सरकारी ऐं गैर हतमी नतीजा अचण शुरू थी विया। हैदराबाद, जामशोरो, सिजावल, सखर, नौशोर फिरोज, जेकबाबाद ऐं घोटकीअ में चूंडूं थियूं। सखर जे यूसी नसीराबाद में वाइस चेयरमैन जी सीट लाइ पीपुल्स पार्टी उमेदवार लियाकत अली 275 वोट खणी अॻिते, जेयूआई जे कारी खादिम हुसैन 170 वोट हासिल कया आहिनि। नंदापुर वार्ड 3 में जेयूआई जो इसरार कलवड़ 624 वोट खणी अॻिते, आज़ाद उमेदवार अब्दुल गफ़ार कलवड़ 144 वोट खया। ठारू शाह जे यूसी मोलण जे ज़िले काउंसिल जी सीट पीपुल्स पार्टी जो उमेदवार रोशन विस्तड़ो 453 वोट खणी अॻिते, आज़ाद उमेदवार अब्दुल कदीर विस्तड़ो 217 वोट हासिल कया। नौशर फिरोज जे पोलिंग स्टेशन अज़मत देरो ते पीपुल्स पार्टी उमेदवार 342 ऐं आज़ाद उमेदवार खे 78 वोट मिलिया। केएन शाह जे यूसी बुरड़ा जे चयन पोलिंग स्टेशन जे नतीजनि मूजिबि पीपुल्स पार्टीअ जो अमजद बुरड़ो 942 वोट खणी अॻिते आहे, जॾहिं त जीडीए उमेदवार ज़ुल्फ़कार खुहारो 243 वोट हासिल कया आहिनि। पाकिस्तान ॾखिण एशिया जी तारीख़ ऐं नक्शे तां न ख़तम थियण वारो हिसो आहे। भारतीय आर्मी चीफ जो चिड़ ॾियारींदड़ बयान ज़ाहिर करे थो त भारतीय क़यादत पाकिस्तान जी वजूद वारे तस्वर खे क़बूल नथी करे सघे। ISPR जो भारतीय आर्मी चीफ जी हाणोके इंटरव्यू में बयान ते रदि अमल। ISPR मूजिबि भारत खे पाकिस्तान जी अहमियत तस्लीम कंदे पुरमुन गॾियल बका जो रस्तो अख़्तियार करणो पवंदो। हक़ जी जंग दौरान भारत जी मायूसी समूरी दुनिया में वाइखी थी। पाकिस्तान पहिरियां ई आलमी सतह ते अहम मुल्क ऐं हिकु तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे। ज़िमेवार एटमी रियासतूं सैप ऐं स्ट्रेटजिक संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो कनि थियूं। भारतीय क़यादत ॾखिण एशियाई हिकु ॿिए बोहरान या जंग तरफ़ ॾेखण खां पासो करे।

पाकिस्तान जे खिते में इस्तेहकाम लाइ कोशिशुनि जी अहमियत वधी वई। अमरीका दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कोशिशुनि में पाकिस्तान खे अहम ऐं मर्कज़ी हिसेदार करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल ब्रेट कोपर चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दीअ जी ख़ात्मे लाइ एतमाद जोगो हिसेदार आहे। अमरीका जे सेनेट कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾींदे सेंटकॉम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौजी हिसेदारी सबबि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वॾी कामयाबी मिली। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमरीका जी पुराणी दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जी सिधीअ जी तकासी कनि थियूं। दहशतगर्दी वारनि सरगर्मियुनि ऐं इलाक़ाई सिक्योरिटी ख़तरनि सबबि अफ़गानिस्तान वाशिंगटन जे ध्यान जो महवर आहे।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक भेर ॿीहर खबरदार कंदे चयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वठे त हुन जे हक़ में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन मुआदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, जेको हुन जे वेझो पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका ऐं इसराइल ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती आहे। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिबि विच ओभर जे ॿिनि आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन्स ते गौर करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान जे फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वॾी बमबारी, नॉर्थ फॉर्स में वाक़े ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़ ख़ारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज़ लाहे मलबे हेठां दबियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठणु शामिल आहे।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315-2575-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: मुझो भी यो ही हाल हो
5: खबर ना है तुम्हें सब कुछ किया क्यों नानी मां ता एतरो थकी थी पवा छा कयो हो तवा
6: हो पहले 6 महीने सिर्फ मां का दूध अब दूध कैसे आए ये जरा पूछ
5: किए

0: ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। अमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़री, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।
3: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी, ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ।

0: से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिल
2: जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला 2 वॻे खां शाम, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारी 2 वॻे खां
2: सॼो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी, जनरल सर्जन, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल, नोतकाणी चौक, बदीन रोड।

0: बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

सिंध जे 8 ज़िलनि में मकानी इदारनि जी नंढी चूंड लाइ पोलिंग जो अमल मुकमल थियण बाद गैर सरकारी ऐं गैर नतीजा अचणु शुरू। हैदराबाद में UC 49 जे वार्ड 2 ते पीपुल्स पार्टी उमेदवार आलम खान 335 वोट खणी अॻिते। UC 43 जे चेयरमैन वारी सीट ते वोटनि जी गणप जो अमल जारी। सख जे UC नसीराबाद में वाइस चेयरमैन जी सीट लाइ पीपुल्स पार्टी उमेदवार लियाकत अली 275 वोट खणी अॻिते। JUI जे कारी खादिम हुसैन 170 वोट खया। निंदापुर वार्ड 3 में JUI जो इसरार कलवड़ 624 वोट खणी अॻिते। आज़ाद उमेदवार अब्दुल गफ़ार कलवड़ 144 वोट हासिल कया। ठारू शाह जे UC मोलण जे ज़िले काउंसिल जी सीट पीपुल्स पार्टी जो उमेदवार रोशन विस्तड़ो 453 वोट खणी अॻिते। आज़ाद उमेदवार अब्दुल कदीर विस्तड़ो 217 वोट खया। नौशेरो फिरोज जी पोलिंग स्टेशन अज़मत देरो ते पीपुल्स पार्टी उमेदवार 342 ऐं आज़ाद उमेदवार 78 वोट हासिल कया। केन शाह जे UC बुरला जे चयन पोलिंग स्टेशन जे नतीजनि मूजिबि पीपुल्स पार्टी जो अमजद बुरड़ो 942 वोट खणी अॻिते। GDA जे ज़ुल्फ़कार फहारो 243 वोट खया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेर ॿीहर ख़बरदार कंदे चयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वठे त हुन जे हक़ में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन मुआदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मोहणो पवंदो। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका ऐं इज़राइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती आहे। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिब विच ओभर जे ॿिनि आला उहिदेदारनि चयो आहे त इज़राइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन्स ते गौर वीचार करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान जे फौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वॾी बमबारी, नार फारस में वाक़े ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़ ख़ारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज़ लाहे मलबे हेठां दॿियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठणु शामिल आहे। लॻे थो त अमरीका ऐं इसराइल ग़लतियुनि मां न सिखियो आहे। रूस पारां ईरान ते ॿीहर हमलनि वारी ख़बर ते रदेअमल। गॾियल क़ौमनि जे मुआशी ऐं समाजी काउंसिल जे इजलास दौरान रूसी नुमाइंदे चयो त लॻे थो त अमरीका ऐं इसराइल माज़ी जे ग़लतियुनि मां सबक़ न सिखियो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
4: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज 90.4

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
5: सुनते रहो GFM 90.4

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अज यार बुखारी
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगे मां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुझी सकंदा। कणक खरीदारी लटकियल, आबादगारन पारां सब्सिडी वठण बावजूद कणक न मिलण ते हुकूमत आपे खां बाहिर। आबादगारन खां सब्सिडी जा पैसा उगाइण जो हुकुम। डिफॉल्टर आबादगारन खे 5 सालन जे लाइ ब्लैकलिस्ट करण जी तजवीज़। मौलाना फजल रहमान ऐं पीर पागारे में पीपी मुखालिफ इतिहाद खे मज़बूत करण ते इतफ़ाक़। कराचीअ में अहम मुलाक़ात। एंटी करप्शन सिंध पारां मीरपुर ख़ास जे रेवन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी कंदड़ वधीक 3 ॼणा गिरफ़्तार। जांच दौरान अहम इंकशाफ़। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे CCE 2024 इम्तिहान जा तकरारी नतीजा मुअतल। रिकॉर्ड सील, सेक्रेटरी तलब। लाड़काणे अस्पताल में वियम लाइ आयल औरत बार समेत फोत। डॉक्टरनि ते गिफ़लत जो इल्ज़ाम। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा। सिंध में कारोकारीअ जो कारोबार कॾहिं ख़तम थींदो।

सिंध हुकूमत पारां सूबे जे 3,36,000 नंढनि आबादगारनि खे कणक पोखीअ लाइ यूरिया ऐं डीएपी जे मद में सब्सिडी ॾियण बावजूद कणक सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ताईं न पहुती। सिंध हुकूमत पारां कणक ख़रीदारीअ जो 10 लख टन वारो हदफ पूरो न थियण जो इम्कान। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंध हुकूमत समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखी हिदायत कई आहे त जिन आबादगारनि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में 22,000 रुपया सब्सिडी वठण बावजूद कणक जी पोखाई न कई आहे उन्हनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां सिंध जे ज़राअत खाते जे अख़्तियारनि पारां समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखी उहा हिदायत कई वई आहे त सिंध काबीना जे फैसले हेठि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में रक़म वठण बावजूद कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंध हुकूमत पारां सिंध काबीना जे फैसले तहत 25 एकड़ खां घटि ज़मीन रखंदड़ आबादगारनि खे कणक पोखाईअ लाइ फी एकड़ जे हिसाब सां डीएपी ऐं यूरिया ख़रीदारी जे लाइ 22,000 रुपियनि ताईं सब्सिडी ॾिनी वई हुई। ज़रियनि मूजिबि त कणक पोखी न थियण ऐं सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ते नंढनि आबादगारनि पारां कणक न पहुचाइण बाद सिंध हुकूमत पारां सख़्त फ़ैसिलो कंदे आबादगारनि खां सब्सिडी वापसि कराइण जे लाइ डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखियो वियो आहे। उन हवाले सां सिंध सरकार जो चवणु आहे त अहिड़नि आबादगारनि खां न रुगो रक़म वापसि वरिती वेंदी पर ईंदड़ 5 सालनि ताईं खेनि कंहिं बि क़िस्म जी सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जी राजा हाउस आमद सिंध में पीपी मुखालिफ़ इतिहाद खे मज़बूत करण जो फ़ैसिलो। हुन ॾसमी काल्ह मौलाना फज़ल रहमान राजा हाउस पहुची GDA जे सरबराह पीर पागारे सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात जे आमद वक़्तु सैद राशिद शाह राशिदी ऐं मौज़ूम आबासी संदसि इस्तक़बाल कयो। जॾहिं त मुलाक़ात दौरान JUI अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो ऐं ॿिया अॻवान पिण मौजूद हुआ। ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात दौरान सिंध समेत मुल्की सूरत हाल ते गुफ़्तगू थी। मुलाक़ात में सिंध जे GDA ऐं JUI पारां गॾियल हिकमत अमलीअ तहत सिंध सरकार खे टफ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। होॾां GDA तर्जुमान मूजिबि मुलाक़ात में JUI क़यादत पारां सखर में कोठायल अमन कॉन्फ्रेंस में GDA क़यादत खे शरीक थियण जी दावत ॾिनी वई। मुलाक़ात में सिंध समेत सॼे मुल्क जे तालीमी इदारनि में मंशियात फरोशीअ ते पिण गणतीअ जो इज़हार कयो वियो। मीरपुर खास में रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी ऐं जाली खाता ठाहिण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल मीरपुर खास तालके जे अॻूणे मुख़्तियारकार राशिद जी मुबैना इनकशाफ़नि खां पोइ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई कंदे हिकु ॼणे इम्तियाज़ बरफत संदसि सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफत ते इल्ज़ाम आहे त हू हेराफेरी कंदड़ रेवेन्यू आफ़िसरनि लाइ फ्रंटमैन तौरु किरदार अदा कंदो हो। एंटी करप्शन खाते जे ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफत 80 रुपियनि जी मिल्कियत पंहिंजे सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम जे नाले रजिस्टर्ड कराए छॾी हुई। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल जवाबदार ते उहो पिणु इल्ज़ाम आहे त हुननि रेवेन्यू अमलदारनि जे मिली भगत सां क़ीमती एराज़े जा जाली खाता ठाहिया ऐं गॾोगॾु सरकारी ऐं निजी ज़मीनुनि जूं फर्ज़ी दाख़िलाऊं तयार कयूं हुयूं ऐं गॾोगॾु हुननि सरकारी रिकॉर्ड में रदो बदल करे ज़मीन जी मिल्कियतुनि खे पिणु तब्दील कयो हो। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल इम्तियाज़ बरफत अहम इनकशाफ़ कया आहिनि जंहिं बाद ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ छापा पिणु हया वञनि पिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन CCE 2024 इम्तिहान जे तकरारी नतीजनि खे मुअतल करे छॾियो। काल्ह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जे नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी। दरख़्वास्त गुज़ार मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त उहे स्क्रीनिंग टेस्ट ऐं लिखत वारे इम्तिहान में सुठी कारकर्दगीअ बावजूद इंटरव्यू में नाकाम करार ॾिना विया। जॾहिं त मेरिट जे उबतड़ मनपसंद उम्मेदवारनि खे कामयाब करार ॾिनो वियो। उन ई इम्तिहान में वेठल 10,000 मां सिर्फ़ 70 उम्मेदवारनि खे पास कयो वियो आहे। अहिड़े अमल सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजी साख विञाए चुकी आहे। अदालत इब्तदाई ॿुधणीअ बाद मामले खे गौर तलब करार ॾींदे कमीशन जे सेक्रेटरी कंट्रोलर एडवोकेट जनरल सिंध ऐं लाॻापियल ज़रियनि खे 21 मई लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे हुकुम ॾिनो त गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पेश कयो वञे। अदालत वधीक हुकुम ॾिनो त 6 मई 2026 ते जारी कयल नतीजनि बाबति प्रेस रिलीज़ ते ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं अमल दरामद मुअतल रहंदो। उन ई बुनियाद ते वधीक का बि कार्रवाई न कई वेंदी। लाड़काणे जे शेख ज़ैद औरताणी अस्पताल में वियम जे लाइ दाख़िल शहदाद कोट भरिसां ॻोठ गोलूवाह जी रहवासियुनि 8 ॿारनि जी माउ 40 वरनि जी नाज़िया ज़ाल राज़ी ख़ान खोसो ऐं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार फोत थी विया।
वारसन अस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं अमले मथां गिफ़लत जो इल्ज़ाम लॻाईंदे एहतजाज कयो। उन मौके ते फोती औरत जे भाउ हिदायतुल्लाह खोसो इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त मंझंदि 12 वॻे धारे मां पंहिंजी भेण नाज़िया खोसो खे वियम जे लाइ लाड़काणे जे शेख ज़ैद औरताणी अस्पताल दाख़िल करायो, जिथे डॉक्टरनि जे मशवरे ते मां 1000 रुपियनि जूं क़ीमती दवाऊं ख़रीद करियूं। रत जूं 8 थेलियूं खेनि ॾिनियूं। उन जे बावजूद डॉक्टरनि भेण जो इलाज न कयो, जिन खे मां इलाज मिंथूं बि कयूं पर हुननि मुंहिंजी हिक बि न ॿुधी। जिनजी गिफ़लत ऐं लापरवाही सबब मुंहिंजी भेण 8 ॿारनि जी अमर नाज़िया खोसो अस्पताल जे वार्ड में तड़पी तड़पी फोत थी वई, जॾहिं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार बि फोत थी वियो आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठणी भेण जे इलाज में गिफ़लत जो मुज़ाहिरो कंदड़ डॉक्टरनि ऐं अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।

0: यो हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दिना इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ए शिफाफ पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।
4: अवाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहयो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल,
4: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहयो आहे।
3: उनका अलावा असां वट रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अघते मौजूद आहे।
4: अवां जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
3: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ए बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जंहिंमें
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, बिया मुख़्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंद 2 वॻे खां रात 8 वॻे ताईं मरीज़न जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझन 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़न जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकारी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: 8:15 PM
3: This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream Asli Glow Har Diya Josho A product by Biocon International Pakistan
5: Chhawa penje karobar ji tarakki lai soche raha ayo
1: The Poe GAFM 90.4 Matli Badin ek edo FM radio aaye
5: jeko hale tho bina break ae musalsal
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
1: जी हा 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347321230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुझी सकंदा। कणक खरीदारी लटकियल, आबादगारन पारां सब्सिडी वठण बावजूद कणक न मिलण ते हुकूमत आपे खां बाहिर। आबादगारन खां सब्सिडी जा पैसा उगाइण जो हुकुम। डिफॉल्टर आबादगारन खे 5 सालन जे लाइ ब्लैकलिस्ट करण जी तजवीज़। मौलाना फजल रहमान ऐं पीर पागारे में पीपी मुखालिफ इतिहाद खे मज़बूत करण ते इतफ़ाक़। कराचीअ में अहम मुलाक़ात। एंटी करप्शन सिंध पारां मीरपुर ख़ासि जे रेवन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी कंदड़ वधीक 3 ॼणा गिरफ़्तार। जांच दौरान अहम इंकशाफ़। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे CCE 2024 इम्तिहान जा तकरारी नतीजा मुअतल। रिकॉर्ड सील, सेक्रेटरी तलब। लाड़काणे अस्पताल में वियम लाइ आयल औरत बार समेत फोत। डॉक्टरनि ते गफलत जो इल्ज़ाम। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, सिंध में कारोकारीअ जो कारोबार कॾहिं ख़तम थींदो।

सिंध हुकूमत पारां सूबे जे 3,36,000 नंढनि आबादगारनि खे कणक पोखीअ लाइ यूरिया ऐं डीएपी जे मद में सब्सिडी ॾियण बावजूद कणक सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ताईं न पहुती। सिंध हुकूमत पारां कणक ख़रीदारीअ जो 10 लख टन वारो हदफ़ पूरो न थियण जो इम्कान। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंध हुकूमत समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखी हिदायत कई आहे त जिन आबादगारनि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में 22,000 रुपया सब्सिडी वठण बावजूद कणक जी पोखाई न कई आहे उन्हनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां सिंध जे ज़राअत खाते जे अख़्तियारनि पारां समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखी उहा हिदायत कई वई आहे त सिंध काबीना जे फैसले हेठि डीएपी ऐं यूरिया जे मद में रक़म वठण बावजूद कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंध हुकूमत पारां सिंध काबीना जे फैसले तहत 25 एकड़ खां घटि ज़मीन रखंदड़ आबादगारनि खे कणक पोखाईअ लाइ फी एकड़ जे हिसाब सां डीएपी ऐं यूरिया ख़रीदारी जे लाइ 22,000 रुपियनि ताईं सब्सिडी ॾिनी वई हुई। ज़रियनि मूजिबि त कणक पोखी न थियणु ऐं सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ते नंढनि आबादगारनि पारां कणक न पहुचाइण बाद सिंध हुकूमत पारां सख़्त फ़ैसिलो कंदे आबादगारनि खां सब्सिडी वापसि कराइण जे लाइ डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़त लिखियो वियो आहे। उन हवाले सां सिंध सरकार जो चवण आहे त अहिड़नि आबादगारनि खां न रुगो रक़म वापसि वरिती वेंदी पर ईंदड़ 5 सालनि ताईं खेनि कंहिं बि क़िस्म जी सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जी राजा हाउस आमंद सिंध में पीपी मुखालिफ़ इतिहाद खे मज़बूत करण जो फ़ैसिलो। हुन ॾस में काल्ह मौलाना फज़ल रहमान राजा हाउस पहुची GDA जे सरबराह पीर पागारे सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात जे आमद वक़्तु सैद राशिद शाह राशिदी ऐं मौज़ूम आबासी संदसि इस्तक़बाल कयो। जॾहिं मुलाक़ात दौरान JUI अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो ऐं ॿिया अॻवान पिण मौजूद हुआ। ज़रियनि मूजिब मुलाक़ात दौरान सिंध समेत मुल्की सूरत हाल ते गुफ़्तगु थी। मुलाक़ात में सिंध जे GDA ऐं JUI पारां गॾियल हिकमत अमलीअ तहत सिंध सरकार खे टफ़ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। होॾां GDA तर्जुमान मूजिब मुलाक़ात में JUI क़्यादत पारां सखर में कोठायल अमन कॉन्फ्रेंस में GDA क़्यादत खे शरीक थियण जी दावत ॾिनी वई। मुलाक़ात में सिंध समेत सॼे मुल्क जे तालीमी इदारनि में मंशियात फरोशीअ ते पिण गणतीअ जो इज़हार कयो वियो। मीरपुर खास में रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी ऐं जाली खाता ठाहिण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल मीरपुर खास तालके जे अॻूणे मुख़्तियारकार राशिद जे मुबैना इनकशाफ़नि खां पोइ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई कंदे हिकु ॼणे इम्तियाज़ बरफत संदसि सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि मूजिब इम्तियाज़ बरफत ते इल्ज़ाम आहे त हू हेरा फेरी कंदड़ रेवेन्यू आफ़िसरनि लाइ फ्रंटमैन तौरु किरदार अदा कंदो हो। एंटी करप्शन खाते जे ज़रियनि मूजिब इम्तियाज़ बरफत 80 रुपियनि जी मिल्कियत पंहिंजे सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम जे नाले रजिस्टर्ड कराए छॾी हुई। ज़रियनि मूजिब गिरफ़्तार थियल जवाबदारनि ते उहो पिण इल्ज़ाम आहे त हुननि रेवेन्यू अमलदारनि जे मिली भगत सां क़ीमती एराज़े जा जाली खाता ठाहिया ऐं गॾोगॾु सरकारी ऐं निजी ज़मीनुनि जूं फर्ज़ी दाख़िलाऊं तयार कयूं हुयूं ऐं गॾोगॾु हुननि सरकारी रिकॉर्ड में रदो बदल करे ज़मीन जी मिल्कियतुनि खे पिण तब्दील कयो हो। ज़रियनि मूजिब गिरफ़्तार थियल इम्तियाज़ बरफत अहम इनकशाफ़ कया आहिनि।

पब्लिक सर्विस कमीशन जे गडियल मुकाबले वारे इम्तिहान 2024 जे नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी। दरख़्वास्त गुज़ार मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त उहे स्क्रीनिंग टेस्ट ऐं लिखत वारे इम्तिहान में सुठी कारकर्दगी बावजूद इंटरव्यू में नाकाम करार ॾिना विया। जॾहिं त मेरिट जे उबतड़ मनपसंद उमेदवारनि खे कामयाब करार ॾिनो वियो, उन ई इम्तिहान में वेठल 10,000 मां सिर्फ़ 70 उमेदवारनि खे पास कयो वियो आहे। अहिड़े अमल सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजी साख विञाए चुकी आहे। अदालत इब्तदाई ॿुधणीअ बाद मामले खे गौर तलब करार ॾींदे कमीशन जे सेक्रेटरी, कंट्रोलर, एडवोकेट जनरल सिंध ऐं लाॻापियल ज़रियनि खे 21 मई लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे हुकुम ॾिनो त गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पेश कयो वञे। अदालत वधीक हुकुम ॾिनो त 6 मई 2026 ते जारी कयल नतीजनि बाबति प्रेस रिलीज़ ते ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं अमल दरामद मुअतल रहंदो। उन ई बुनियाद ते वधीक का बि कार्रवाई न कई वेंदी। लाड़काणे जे शेख ज़ैद औरताणी अस्पताल में वियम जे लाइ दाख़िल शहदाद कोट भरिसां ॻोठ गोलूवाह जी रहवासण 8 ॿारनि जी माउ 40 वरनि जी नाज़िया ज़ाल राज़ी ख़ान खोसो ऐं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार फौत थी विया। वारसन अस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं अमले मथां गिफ़लत जो इल्ज़ाम लॻाईंदे एहतजाज कयो। उन मौके ते फौती औरत जे भाउ हिदायतुल्ला खोसो इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त मंझंदि 12 वॻे धारे मां पंहिंजी भेण नाज़िया खोसो खे वियम जे लाइ लाड़काणे जे शेख ज़ैद औरताणी अस्पताल दाख़िल करायो, जिथे डॉक्टरनि जे मशोरे ते मां 1,000 रुपियनि जूं क़ीमती दवाऊं ख़रीद करियूं। रत जूं 8 थेलियूं खे ॾिनियूं। उन जे बावजूद डॉक्टरनि भेण जो इलाज न कयो, जिन खे मां इलाज मिंथूं बि कयूं पर हुननि मुंहिंजी हिक बि न ॿुधी। जिन जी गिफ़लत ऐं लापरवाही सबब मुंहिंजी भेण 8 ॿारनि जी अमर नाज़िया खोसो अस्पताल जे वार्ड में तड़पी तड़पी फोत थी वई, जॾहिं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार बि फोत थी वियो आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठणी भेण जे इलाज में गिफ़लत जो मुज़ाहिरो कंदड़ डॉक्टरनि ऐं अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड